पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकर माती दी महक तशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो तुहां सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला आशोता तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने तो हाँ सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशोता हूँ फिर यहाँ तो हमें ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तो हाँ भी सुना कनेक्ट नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहा सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना दे ने से सुना दे ने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते हाँ अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते हाँ अगे बढ़ाना है फिर ते सुनते निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुनांदे ने से सुनांदे ने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर ते एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
1: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
2: जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
3: वही असली तरक्की।
2: एक कदम स्वच्छता की ओर।
4: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना नो शेयरिंग?
2: मामा
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
1: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है ऐसे।
5: Oh, no. यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
1: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

91.2 MHz पर मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: रखी हुई है।
1: दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो मंचन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

बीआरओ के महानिदेशक ने राज्यपाल से की भेंट। शाहपुर में 78 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर, भवन निर्माण पर 22 करोड़ और पीएमजीएसवाई के तहत 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धारकंडी क्षेत्र की 4 सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी, विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। यूएई में इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए 14 अक्टूबर तक करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से।

सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में वीआरओ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी दी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश के दूरदराज और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने में वीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मजबूत, टिकाऊ और लचीले बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल दिया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शाहपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान केवल सिंह पठानिया ने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है। इनमें भवन निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड के तहत संचालित विकास परियोजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन कार्य को शीघ्र पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को इन सुविधाओं का दीर्घकालिक लाभ मिल सके। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा एसएमई एंटरप्राइजेस मुंबई के सहयोग से मेसर्स वर्टिव गल्फ एल

होंगे। उम्मीदवार के पास अपना वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन आवेदन के लिए पात्र हैं, लेकिन चयन होने के 7 दिनों के भीतर पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य रहेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपए के अतिरिक्त GST व 1,500 रुपए चिकित्सा शुल्क देना होगा। किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 0189-222-4892। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष सालाना पास योजना लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोज रोज के टोल टैक्स के भारी खर्च से मुक्ति दिलाना है। नए प्रस्ताव के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान करके साल भर की वैधता वाला पास जारी किया जाएगा। इसके बाद वे बिना किसी अतिरिक्त दैनिक शुल्क के टोल प्लाजा से असीमित आवाजाही कर सकेंगे। इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि टोल काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और स्थानीय विवादों में भी कमी आएगी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2026 का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। ओमान में ये टूर्नामेंट 5 से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर थी, जिसके लिए ACC ने 8 नवंबर का दिन निर्धारित किया है। दोनों टीमों के बीच ओमान के OCA ग्राउंड में मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा UAE और नेपाल अन्य 2 टीमें हैं। भारत अपना अभियान 6 नवंबर को नेपाल अंडर 19 के खिलाफ शुरू करेगी। ग्रुप स्तर पर सभी टीमों के बीच कुल 12 मैचों का आयोजन होगा। हर ग्रुप के शीर्ष 2 टीमें 12 नवंबर को सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार का पिक एंड चूज की नीति को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संवर्ग में पदोन्नति वाले उच्च पद का वेतनमान उसके फीडर पद से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शशिपाल ठाकुर और 57 अन्य स्वास्थ्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरकार के 30 जनवरी 2016 को उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसके तहत स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर 4200 का ग्रेड पे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब तय समय सीमा बीतने के बाद अपील करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिफाइड पब्लिक सर्विस गारंटी पोर्टल पर ऑटो अपील सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत यदि किसी अधिसूचित ऑनलाइन सेवा का निर्धारित समय में निपटारा नहीं होता है तो मामला अपने आप संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ये व्यवस्था स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। शुरुआती चरण में 4 विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रहे हैं। आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका, लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
6: Oh, no. यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

दोस्तों, ये 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी को आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका का प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ अपनी सेहत का ध्यान भी आप बखूबी, सभी अपना भी और अपने परिवार का भी, छोटे छोटे बच्चों का खास करके, बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जी दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर, जिसके साथ शायद आपकी सुबह अधूरी रह जाती है। थोड़ी सी बात जो मन को छू जाए, आपके दिन को खूबसूरत बना दे, यानी कि दिन की शुरुआत को प्यारा बना दे। जी दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2026 का दिन, बहुत खास दिन है दोस्तों। जो भी सोच विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हमारे मन में चलते रहते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में किस तरह से असर रहता है, किस तरह से हमें प्रभावित करती हैं, ये सारी चीज़ें आज के दिन के लिए बेहद मायने रखती हैं, बेहद खास हैं। जी दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ खास रहने वाला है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है कार्यक्रम की, अभी सारी बातें बताएंगे, तो फिर आप इंतज़ार कैसे करेंगे? जी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे आगे की ओर, और बातें भी पहुंचाएंगे आप सभी तक, जानकारियां भी पहुंचाएंगे ढेर सारी। तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत सा है, सेकंड सैटरडे का दिन है और छुट्टी वाला दिन है, तो ये दो छुट्टियां एक साथ अपनों के साथ के लिए, घर के काम को प्यार से निभाने के लिए, करने के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बातें आप सभी के साथ करने को है, क्योंकि आप सभी 11 बजे तक के इस सफर के लिए जुड़ चुके हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं मनोरंजन की इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: सो इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ ही एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो बिल्कुल मैं तो आ ही चुकी हूँ दोस्तों आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। लेकिन अगर आप कहीं बिजी हैं तो बिल्कुल दोस्तों साथ ही साथ जो है आप रेडियो से टोन कर लीजिए और प्यारे प्यारे से गीत जो है आप सभी इंजॉय कीजिए इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और रुख करते हैं मौसम की ओर। तो मौसम की अपडेट इस समय किस तरह से है और आगे किस तरह से रहने वाली है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस समय तापमान की हम बात करें दोस्तों तो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है धर्मशाला का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम आने वाले समय की अपडेट की बात करें तो दोस्तों 15 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान के अनुसार इस दौरान राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। 13 अक्टूबर को कांगड़ा मंडी सिरमौर जिलों में अंधड़ चलने गरज चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी दोस्तों तो ऐसे में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बात करें कांगड़ा की तो अब कांगड़ा में तो ज़ोर शोर से जो है खेती का काम जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। कुछ फ्री भी हो गए होंगे लेकिन बहुत सारे लोग अभी काम शुरुआत अभी दो छुट्टियां हैं तो ये छुट्टियां सबकी नज़रों में होंगी कि फटाफट से काम को निपटाया जाए और काम किया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों जब सभी साथ होते हैं तो काम का पता नहीं चलता है। तो ये बुरी बात नहीं है कि हम एक साथ मिलकर जब काम करते हैं ना तो अपनापन भी बढ़ता है और उस काम को करने में और ज़्यादा मस्ती जो है वो सभी लोग करते हैं। तो यहीं से रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्तों में प्यार जो है वो बना रहता है। तो आइए दोस्तों इसी अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का अगला गीत।
1: के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।

दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, बहुत ही खूबसूरत से शुरुआत के साथ। दोस्तों कहते हैं कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस निभाने की कोशिश एक तरफ से बंद हो जाती है। पहले हर बात में अपनापन होता है, फिर जवाब छोटे होते जाते हैं, बातें कम होती जाती हैं और दूरियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। हर बदलते रिश्ते को अपनी कमी मत समझिए, कभी कभी सामने वाले की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और रिश्ते वहीं पीछे छूट जाते हैं। यही होती है रिश्तों की कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों बहुत नाजुक से होते हैं ये रिश्ते, इन्हें संभाल लिया जाए प्यार से तो ये बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें संभाला ना जाए तो ये कब टूट कर बिखर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों आज का दिन बेहद ख़ास क्यों है, दोस्तों आज 10 अक्टूबर 2026 का दिन है, तो आज दिल्ली जंतर मंतर में फिर से प्रोटेस्ट जो है एक बहुत बड़ा वाला प्रोटेस्ट होने को जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि ये बातें जो जेएनजी के चलते जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भी एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था और अब दोबारा से किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है और लिमिट्स में रहकर चीज़ें हों, शांतिपूर्ण हों तो शायद ज़्यादा बेहतर है, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएं और जो भी उनकी मांग है उस पर कोई समाधान किया जाए, हम यही कह सकते हैं। बाकी तो खैर समय के हाथ में है और जो लोग इस पर फैसला लेंगे उनके हाथों में है। तो ये है फिलहाल की अपडेट, लेकिन हाँ उसके साथ ही दोस्तों बात करें हमारे मानसिक स्वास्थ्य की, जो हमारे

दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का। तो उसे हम किस तरह से उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। कहते हैं ना, एक एक चीज़ पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी रहता है। तो आज की ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इसमें आप सभी की एक बहुत ही खास मेहमान के साथ मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी, खास करके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। लेकिन उसके लिए अभी आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो करना होगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए रुचिका के साथ इस प्यारे से सफर को। आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। एंजॉय कीजिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, बातचीत के साथ साथ कुछ खास जानकारियों का सिलसिला भी कार्यक्रम में रहता है आप सभी तक पहुंचाने का। तो आइए अब रुक करते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर।

दोस्तों बात कर रहे हैं हम जानकारी की, तो जानकारी की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से डाक और पार्सल पहुंचाने की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर इस सेवा का संचालन होगा, जबकि वर्तमान में 36 मार्गों पर ड्रोन से डाक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य डाक महाप्रबंधक संजय सिंह ने ये जानकारी दी। जी दोस्तों, विश्व डाक दिवस एवं राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 के शुभारंभ अवसर पर संजय सिंह ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों तक डाक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाना है। ड्रोन के इस्तेमाल से डाक और पार्सल कम समय में पहुंचाए जा सकेंगे तथा डाक सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। जी दोस्तों, तो ये सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026। तो आइए, ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

तो सो अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों के साथ कभी ये ना पूछना, बहुत ही प्यारा सा गीत नाम गुम जाएगा मूवी से आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से। जी दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और जिस तरह के इससे जो है आज के दिन की खासियत की हम बात कर रहे हैं, और दोस्तों आज के दिन की खासियत जो है ये है जो कि आज हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ द्वारा घोषित विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इस बार का जो विषय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी खास दिन जो मनाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। हर साल की एक अलग थीम जो है वो रहती है, तो इस बार की जो थीम है, जीने के अनुभवों को सुना जाए, सच्ची आवाज़ें, सच्चा बदलाव। यदि आप अपनी या अपने किसी प्रियजन की सेहत को लेकर चिंतित हैं, तो समय पर चिकित्सा सहायता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। स्थिति को समझना, चेतावनी के लक्षणों को पहचानना और पेशेवर मदद कब लेनी है ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। और भी बहुत कुछ खास बातें हैं दोस्तों आज के दिन से जुड़ी, और लेकिन जो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं, इस पे जब हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उनकी बातचीत जब हम सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मन में भ्रम रहते हैं, सुनी सुनाई बातों में हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और समय रहते उन्हीं बातों के चलते इलाज नहीं ले पाते हैं, और बीमारी एक दिन ऐसा रूप ले लेती है कि वो हमारे हाथों में आने वाली ही नहीं रहती, हमारे तो छोड़िए डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं आ पाती है। फिर जब बीमारी बिगड़ जाती है, फिर हम पछताते हैं, फिर हम कोसते हैं एक दूसरे को। तो इससे अच्छा है कि समय रहते बिना किसी झिझक के जो है हम सही समय पर सही इलाज अगर ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन चार लोगों के बातों के चलते हम इलाज नहीं कराते, हम बातों को छुपाते हैं, तो वो चार लोग अगर आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे और बुरा करोगे तब भी कहेंगे, उनका काम है कहना। आप अपनी ज़िंदगी को उनके कहने के चलते एक गलत डायरेक्शन में मत जाने दीजिए। फिलहाल दोस्तों कार्यक्रम की डायरेक्शन जो है बातचीत से सीधे प्यारे प्यारे से गीत की ओर जो है वो करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

91.2 ओमेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कुछ खास बातचीत जो है थोड़ा उस पर भी नज़र डालते हैं।

जी दोस्तों, तो आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो उस पे तो हम बिल्कुल आपकी जो है बातचीत एक्सपर्ट के साथ ही करवाने वाले हैं, मुलाकात करवाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन साथ ही बात करें दोस्तों आज के दिन की और ख़ास बातों की, तो आज के दिन जो है नेशनल हैंडबैग डे जो है वो भी हम मना रहे हैं। तो दोस्तों, जहां हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे लोग यहां घूमने के लिए आते हैं, और हम भी क्या करते हैं कई बार कि घर में जो है वो ज़्यादातर यूज़ जो है वो प्लास्टिक बैग्स का करते हैं। लेकिन हमें पहले के समय की बात करें तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो है कपड़ों की थैलियाँ बनाई जाती थी और उसी का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन अब काम से हम लोग टलते हैं, काम का आलस जो है हमें घेर लेता है और हम उस चीज़ को करने से थोड़ा सा आलस जो है उसमें दिखा ही देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितना प्लास्टिक हम यूज़ करेंगे उतना ही पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम रैपर्स जो हैं वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और ना उसे जलाने से भी आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण तो फैलता ही है दोस्तों। लेकिन जितना अवेयर हम खुद को कर सके, जितना यूज़ हम हैंड बैग्स का करें, जो खुद के बनाए गए कपड़ों से बनी थैलियों का यूज़ हम करें छोटे से छोटे सामान के लिए या बड़े से बड़े सामान के लिए, तो उतना ही हम जो प्रदूषण है उसे कम करने में अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो ज़रूर दीजिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस पर किए भी जाते हैं और उम्मीद है कि आप सभी भी उसमें अपना योगदान दें। फिलहाल दोस्तों 9:50 हो चुके हैं और रुचिका की बातें तो इसी तरह से चलती रहेंगी क्योंकि ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन

0: है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जन अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास रहने वाले परिवारों को विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खिलौने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ कल से शुरू हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता महाकुंभ के दूसरे दिन आज समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से शामिल होंगे। आयोजन के पहले दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने समग्र शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का विकास केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व में ज्ञान के साथ संस्कार, संवेदना, नैतिकता, कर्तव्य बोध, भारतीय संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश भी आवश्यक है। इस महाकुंभ के प्रथम दिन का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत रहा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: NIT हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ 6.0 के प्रथम दिवस का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत रहा। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन का प्रथम दिवस का उद्घाटन पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत विषय पर आयोजित विषय से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटारिया जी ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा सदियों से उसकी पहचान और शक्ति का आधार रही है। भारतीय जीवन दृष्टि में आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं बल्कि मानवता, प्रकृति, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ी हुई है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धुलारा में कल माता मनसा देवी संपर्क सड़क व मनहुता में सियुण खड्ड संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 1,66,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पठानिया ने इस अवसर पर डुंगरेड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। आज राष्ट्रीय डाक दिवस है, जिसका मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस का विस्तार है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य पर भारतीय डाक विभाग द्वारा ऊना जिला में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अधीक्षक डाकघर ऊना मंडल बलबीर चंद ने बताया कि 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है और बदलते समय के साथ भारतीय डाक विभाग ने अपनी पारंपरिक सेवाओं के अलावा स्पीड पोस्ट, पार्सल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय डाक, डाक जीवन बीमा, बचत बैंक, आधार व पासपोर्ट सेवाएं तथा डिजिटल भुगतान जैसी कई आधुनिक सेवाएं शुरू की हैं। डाक सप्ताह के दौरान ऊना मंडल के विभिन्न डाकघरों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
4: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 अक्टूबर से ये नवरात्र शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों की रंग बिरंगी रोशनियों व फूलों से सजाया गया है। कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वाला जी, श्री बजरेश्वरी देवी व चामुंडा देवी में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
5: तीनों जो हमारे ट्रस्ट हैं, तीनों शक्तिपीठों के, उन सब ने अपनी जो बैठक इस बारे में कर ली है और सुरक्षा संबंधी इंतजाम, सेफ्टी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वहां पर एडिशनल हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको लेकर, वहां का जो हमारा टेक्निकल नेटवर्क है, जो CCTV वगैरह है, उनकी दुरुस्ती, वो सारे पार्ट के ऊपर चर्चा उनकी हुई है और वो तैयारी अपनी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े श्रद्धालु हैं उनकी कन्वीनियंस भी हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दें और श्रद्धालुओं को उसमें परेशानी आना शुरू हो, तो दोनों का बैलेंस करके वहां पर हम इस पे इंतजाम में ध्यान रखेंगे।
0: उधर ऊना जिला के चिंतपूर्णी, बिलासपुर के श्री नैना देवी जी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों के लिए सुविधा व सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। शक्तिपीठों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिरों व इसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा मंदिर व इसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इधर शिमला जिले में भी नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
6: नवरात्रि के मौकों पर राजधानी शिमला के देवी मंदिरों में 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होगी। शहर के तारा देवी, कालीबाड़ी, BCS और ढींगूदार देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे से खुल जाएंगे। मां दुर्गा के आगमन पर देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों को रंग रोगन कर चमकाया गया है। तारा देवी के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। वहीं BCS स्थित देवी मंदिर में भंडारों के लिए टेंट लगने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों की सजावट की जाएगी। कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना होगी। मान्यता है कि 9 दिन मां दुर्गा की पूजा और उपवास करने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के बीच हल्के बादलों के साथ हुई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। कुल्लू के सैंज व चंबा के चुराह उपमंडल में ओलावृष्टि से मटर व मक्की की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के हवाले से लिखा है, हिमाचल को उसके बजट से ज्यादा पैसा दे रहा केंद्र। अमर उजाला की सुर्खी है, शिमला से मटौर तक बनेगा पूरा 4 लेन, बिलासपुर हमीरपुर भी जुड़ेंगे। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भानुपल्ली बेरी रेल लाइन को सुक्कू सरकार ने 4,818 करोड़ में से 847 करोड़ ही दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का किया आह्वान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में तीन दिवसीय शिक्षा महाकुंभ शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि कल से शुरू। राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
7: वृद्धाश्रम।

0: दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज यानी कि 10 अक्टूबर 2026 का दिन है, बहुत ही खास है, खास करके हमारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातों के लिए। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था दोस्तों कि आज जो है आप सभी की मुलाकात बहुत खास मेहमान से होने वाली है, तो स्वागत करते हैं प्रियशी मैम का हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास बातचीत में। जी तो दोस्तों जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो प्रियशी मैम जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और कई बार जो है हम इस शब्द को सुनते ही मन में बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो चलते हैं कि हम क्यों जाएं। और आप सभी जानते हैं कि इस बात से किस बात को टैग किया जाता है असल में। तो सबसे पहले मैम आप क्या कहना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड?
1: देखिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा एक शारीरिक स्वास्थ्य है
0: जी,
1: क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना दें तो शारीरिक स्वास्थ्य की तबीयत खराब होनी तो अनिवार्य है, ऐसा समझिए, उसको फिर आप रोक नहीं सकते
0: जी।
1: तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसके लिए आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के रिगार्डिंग भी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो बहुत सारी बातें जो है हम इस पे अभी करने वाले हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, मैम का स्वागत किया है हमने इस बहुत ही खास बातचीत में। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस गंभीर सी बातचीत पे जो है आप सभी को लेकर चलेंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों के साथ, एक हिंदुस्तानी मूवी से लिया गया था और आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका ने। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान आप सभी से बातचीत साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, प्रियशी मैम जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन को और खास बनाते हैं मैम से कुछ खास जानकारियां जान के। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो अगर हम पहले की बात करें और अभी की बात करें, थोड़ा सा अगर हम इसके कंपैरिजन में जाएं, तो आप जो है सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो हैंडल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां या ऐसे इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आते थे या अब जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं?
1: देखिए, जहाँ तक बात है बढ़ने की, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, है ना
0: जी।
1: और अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी जाए कि पहले केसेस कितने थे और अब कितने हैं, तो देखिए ऑब्वियस है कि उसमें एक आप इंक्रीज जो एक इंक्रीमेंट है वो तो आप देखेंगे ही, फुटफॉल जो है लोगों का, जितने लोग अब अप्रोच करते हैं या जितने लोग अब आते हैं कंसल्टेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आज के समय पर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया की मदद की वजह से जो एक स्टिग्मा है वो कम होता जा रहा है
0: साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड,
1: यस, कि थेरेपी एक जो है वो आम चीज़ है कि लोग कर सकते हैं। देखिए, इट्स जस्ट लाइक जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं एक नॉर्मल चेकअप के लिए कि दांत ठीक है कि नहीं है, है ना, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं कि सब कुछ ठीक है शरीर में कि नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अपने मन के प्रति भी लोग अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। और क्योंकि स्ट्रेस रहा है और आगे भी रहेगा
0: जितना हम सोचेंगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा,
1: बिल्कुल। देखिए, हमें ऐसा लगता है जैसे जहाँ शरीर है वहाँ बीमारी है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम लोग कर ही देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जहाँ माइंड है वहाँ पर भी मन से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी ही, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब वो हमारे रिश्तों के प्रति हो या फिर जो भी हम खान पान खाते हैं उससे भी, जो खाना है हमारा उससे भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, क्योंकि आज के समय पे प्रिजर्वेटिव्स और पैकेज्ड फूड, जंक फूड, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं
0: जी।
1: तो ये सिर्फ हमारे शरीर पर ही काम नहीं कर रहे, ये माइंड पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे मानिए कि आज के समय पे डेफिनेटली जो एक इंक्रीमेंट है केसेस में वो देखने को मिला है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए या ऐसा मान लिया जाए कि पहले तो नहीं होता था अब होने लगा है, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये एक मिथ है।
0: बिल्कुल,
1: पहले भी होता था लेकिन पहले लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम में करना क्या चाहिए, ऐसी बीमारी अगर है तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है या फिर राइट काइंड ऑफ पर्सन कौन है, प्रोफेशनल कौन है जिसको हमें जाकर दिखाना चाहिए
0: जी।
1: पहले के टाइम पर अधिकतर ऐसे केसेस जाते थे न्यूरोलॉजिस्ट के पास और फिर वो मेडिसिन देते थे और लोग मेडिसिन खाते थे, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर के पास तक पहुंचती ही नहीं थी, तो साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचने तक में तो बहुत दूर थी।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय पे वो दूरी डेफिनेटली कम हो गई है
0: जी। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि पहले लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जैसे जैसे हम सोशल मीडिया का यूज़ भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम सभी तक पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं ये कार्यक्रम आप सभी इस समय जो है हमारे फेसबुक पेज पे लाइव भी सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और रेडियो के माध्यम से तो आप सभी सुन ही रहे हैं। और एक खास बात कि अगर आपको लगता है कि आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, ऐसा कोई डाउट है, तो आप जो है प्रियशी मैम के साथ जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा 7018117091, इस पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जिस भी तरह से आप अपने सवाल को मैम तक पहुंचाना चाहते हैं या मैम से कोई समाधान चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बात को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं। मैम, बात करते हैं जैसे कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां हैं, तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक एज है? मतलब ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बड़ों में देखने को मिलती हैं, या फिर कौन सी एज में जो है, या आज के समय में हम बात करें तो ये किस एज में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है?
1: देखिए, जो हमारा टीनेज से एडोलेसेंट तक के जो बच्चे का जो यूथ है
0: जी,
1: उसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और उसके अपने कारण भी हैं, अपने अलग ही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। जहाँ तक रही छोटे बच्चों की बात, इन्फेंट्स की बात, तो देखिए उनमें तो देखिए 2 साल के बाद ही इस तरह की चीज़ें में थोड़ा देखने को समझ में आएगा, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं बच्चों की। जब उनमें डिले होने स्टार्ट होते हैं तब जाकर छोटे बच्चों में किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उनको समझा जाता है
0: जी।
1: तो ऐसा है कि 2 से 5 साल के बच्चों में जो एक देखा डायग्नोसिस जो बनता है वो थोड़ा कम बनता है, 5 साल की उम्र में जाके ज़्यादा क्लियर डायग्नोसिस बन पाता है, और उसके बाद तो जो टीनेज और हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को है
0: जी। दोस्तों, तो जिस तरह से शायद ऐसा भी हो सकता है, जो हमारा लाइफस्टाइल है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको अगर थोड़ा सा भी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। या तो यूं कहें कि जो दिन भर हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और वो बातें बिगड़ती जाती हैं, तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ जाता है। तो फिलहाल हम इस बातचीत पे फिर से वापस आएंगे दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ जो मनोरंजन का सिलसिला है उसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में मैम की फरमाइश पे ये खूबसूरत सा गीत आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं, आप सभी के अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: तो सो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान प्रियशी मैम। तो आइए दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत भी आज के कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही मैम की फरमाइश के बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस एज में ये प्रॉब्लम हमें देखने को ज़्यादा मिल रही है आज के समय में या किस भी तरह से, अब हम बात करते हैं कि जैसे एक इंसान को, एक व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है, कैसे वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब जो है उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां एक तरह से उनके शरीर में शुरू हो रही हैं, उनके साथ जो है वो फेस होना शुरू हो गई हैं, वो कैसे उस चीज़ को पहचान सकते हैं, कैसे उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं?
1: देखिए, इसके कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हम शेयर करेंगे और उन पर थोड़ा गौर करके समझिएगा
0: जी।
1: आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा या कभी ना कभी तो ऐसा आपके जीवन में हुआ ही होगा कि कोई समस्या आई है आपके लाइफ में और आपने उसको अपने दोस्तों से डिस्कस किया या अपने घर वालों से डिस्कस किया और आपको लगा कि अब शायद मेरी ये परेशानी अब हल हो गई
0: जी।
1: या हो जाएगी, आपको अच्छा भी लगेगा उनसे बातचीत करके, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही सेम परेशानी वापस आ जाएगी। आपको उसी प्रकार के थॉट्स, वही ओवरथिंकिंग पैटर्न, वही स्ट्रेस, वही टेंशन महसूस होने लग जाएगी और ऐसा बार बार आपके साथ होना शुरू हो जाए। तो ये सबसे पहला एक फैक्टर है कि ऐसा कुछ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है और उसका सल्यूशन जो भी आपके पास है वो एज अ सल्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ कि आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को विजिट करना चाहिए
0: जी।
1: दूसरा, जब भी हमारे थॉट्स, इमोशंस या बिहेवियर में आपको एक प्रकार से ऐसा लगने लगे कि उनकी होने की जो संभवता है वो अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, मतलब जो एक एवरेज स्केल मान के चले तो एवरेज से या तो ज़्यादा या एवरेज से कम, फॉर एग्ज़ाम्पल नींद, तो अगर नींद आपको जितनी आनी चाहिए एक आम व्यक्ति को, जैसे कि 7-8 घंटे या 6-8 घंटे, तो अगर आपको नींद 6-8 घंटे से ज़्यादा आ रही है तो भी दिक्कत है और अगर 6-8 घंटे से कम आ रही है तो भी दिक्कत है। कुछ लोगों की हैबिट होती है जो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट
0: जी।
1: तो इसी प्रकार से ये हो गया कि कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक इसी प्रकार से इसके 3 फैक्टर्स निकलते हैं, इंटेंसिटी, हमारा ड्यूरेशन और उसका फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि जैसे गुस्सा है, तो गुस्सा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, बहुत बार बार बार बार बार आ रहा है, इरिटेशन बार बार बार बार हो रही, छोटी छोटी चीज़ों पर हो रही है, तो वो हो गया कि इंटेंसिटी ज़्यादा है। बट यही इंटेंसिटी कम होने का अर्थ ये भी होगा कि जहाँ पर गुस्सा आने की आवश्यकता है, जहाँ आम तौर पर गुस्सा आना चाहिए था, वहाँ गुस्सा नहीं आ रहा, तो वो भी एक इंडिकेटर है। दूसरा, जैसे हमने बताया ड्यूरेशन
0: जी,
1: तो अब अगर किसी को रोना आ रहा है तो वो रोया ही जा रहा है, उसको बहुत टाइम हो गया कि वो रो रहा है और ऐसा बार बार होता है, तो ये हो गया कि आमतौर पे जो ड्यूरेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम। ठीक उसी प्रकार से हमारा हो गया इंटेंसिटी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। उसके अलावा बात आती है कि जब स्ट्रेस के कारण की वजह से आपको पता है कि कुछ है ऐसा जो ठीक नहीं है, आपको अंदर महसूस होगा कि वो चीज़ ठीक नहीं है, और उस समय पर आपके जीवन में जो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो सोशल लाइफ है वो इम्पैक्ट होनी स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइएगा कि अब जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं या दिक्कतें हैं और उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है
0: जी। मैम, एक कॉल जो हमारे लिसनर में भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको हमारी बातचीत से संबंधित कोई भी जो है इशू फेस हो रहा है या आप मैम से उसके बारे में जो है समाधान चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में भी अगर आप मैम तक बात पहुँचाना चाहते हैं। कई बार होता है कि जब हम बात शेयर करते हैं वहीं से हमें समाधान जो है वो समझ में आ जाता है या पता चल जाता है, जितना हम छुपाते हैं उतना ही हम उस चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झिझक जो है कई बार हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देती है। तो इस बातचीत से संबंधित अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7018117091 पर। तो आइए फिलहाल हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं, किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। तो मैम, मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो अक्सर कई बार क्या होता है कि जैसे कोई जैसे आपने कहा कि ड्यूरेशन बढ़ इसकी ड्यूरेशन इंटेंसिटी और जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैटर करती है। तो अक्सर कई बार हम अकेलेपन में ये चीज़ें ज़्यादा फेस करते हैं, तो उस समय हम अगर इस चीज़ को फेस करें, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एक तरह से, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी मे बी इसको बीमारी को बढ़ने के लिए एक पहलू मिल जाता है, तो उस समय हम खुद को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं या किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं?
1: देखिए, प्रकृति में हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है रुचिका, कि अगर थॉट इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट हैं, हमें प्रकृति से ही मिले हैं ना
0: जी,
1: हम खुद से तो बनाते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ इंसानों के पास थॉट्स और इमोशंस और कुछ के पास नहीं है
0: जी
1: है तो वो सबके पास
0: जी।
1: तो हमें ये समझना है कि उनका स्वभाव कैसा है और उनका पर्पस क्या है। अगर वो आ रहे हैं, अगर आपको कोई थॉट बार बार आ रही है, तो उसका कोई तो कारण होगा। तो इसी प्रकार से माइंड है। अब माइंड तो थॉट्स और इमोशंस को रेगुलेट करता है, वो उसको ऑपरेट करता है, ये माइंड के फंक्शंस हैं। तो माइंड क्या है, माइंड को भी समझना ज़रूरी होता है, माइंड का क्या पर्पस है, उसका कैसा स्वभाव है, तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। वैसे तो इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर को देने का हम पूरी तरीके से प्रयास करते हैं
0: जी।
1: देखिए, माइंड जो है उसका जो एक पर्पस है वो ये कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंस ना बचे। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, जीते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी मेमोरी में तब्दील हो जाते हैं, और कोई भी मेमोरी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तब हमारा माइंड उस पर हमारी अटेंशन को बार बार लेके जाने का प्रयास करता रहेगा। वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि हमारी अटेंशन उस कॉन्फ्लिक्टिंग मेमोरी पे जाए, जिससे हम उस पर्टिकुलर मेमोरी को रिजॉल्व कर सकें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे इंसान का इवोल्यूशन हो सके। तो हमारी जो शरीर है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही इवॉल्व नहीं करते, हम मानसिक लेवल पर भी इवॉल्व करते हैं। अब ऐसे देखिए कि हर मेमोरी एक इमोशन के साथ आती है, यानी इमोशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे किसी न किसी मेमोरी या किसी न किसी चीज़ को चाहिए होता है जिससे वो अपने आप को अटैच कर सके
0: जी।
1: आप कोई भी मेमोरी ले लें तो आपको उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई इमोशंस याद ज़रूर आएगा, महसूस ज़रूर होगा। कोई बचपन का इंसिडेंट होगा तो आपको हंसी आएगी, कोई मासूमियत सी बात होगी तो आपको स्वीटनेस महसूस होगा कि हाउ स्वीट है ना
0: जी।
1: तो इस प्रकार से हमारा जो माइंड है वो इस प्रकार से थोड़ा काम करता है। अब थॉट और इमोशंस जब आते हैं तब इस अगेन अटेंशन ले रहा है आपका माइंड। माइंड एक प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, माइंड आपसे बातें करता है, जैसे हमारा शरीर हमसे बातें करता है। हमें जब घुटने में दर्द होगा तो वो पेन क्या है, पेन हमें बता रहा है कि घुटने में कुछ दिक्कत है, और उसके अनुसार अगर हम डिसीजन लेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा घुटना ठीक हो पाएगा। बट अगर पेन ही ना आए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। ठीक उसी प्रकार से अगर थॉट और इमोशंस ही नहीं आएंगे तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी है जिस पर काम करना ज़रूरी है, जहाँ पे रिजॉल्व करना ज़रूरी है, वो हम नहीं करेंगे तो आगे चलकर और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए जब भी ऐसा हो कि आप कोई भी प्रकार की समस्या महसूस करें, मानसिक लेवल पर स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो आप उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप डाइवर्ट करने का सोचेंगे, जैसा आपने प्रश्न पूछते हुए कहा, तो वो ठीक नहीं है
0: जी,
1: वो गलत है। ऐसे समझिए कि अब जैसे इमोशंस ही हैं, इमोशंस का क्या स्वभाव है, इमोशंस का स्वभाव है बहना, नदी की तरह है इमोशंस
0: जी।
1: और आप अगर नदी पर बांध लगाएंगे तो कुछ समय के बाद वो बांध को तोड़ कर बहेगी और आसपास सब जगह डिस्ट्रक्शन फैला देगी। तो ऐसे ही हमारे इमोशंस काम करते हैं. हम जितना अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे, जितना हम दबाएंगे, जितना हम उन्हें इग्नोर करेंगे, जितना एस्केप ढूंढेंगे, उतनी हमारे भीतर की लोनलीनेस बढ़ेगी और वो समस्या में घी डालने का काम करेगी. तो यानी कि डाइवर्ट, एस्केप, अपना अटेंशन कहीं और लेके जाना, ये चीज़ें नहीं करनी है आपने. आपने अपने इमोशन के साथ बैठना है, उसको समझना है, जानने का प्रयास करना है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या ये मेरा ध्यान किस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रही है और मुझे उस चीज़ के प्रति काम करना है.
0: जी बिल्कुल. तो दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके जो है इस चीज़ को बताया है कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं और कैसे इससे जो है वो बच भी सकते हैं. यानी कि जो चीज़ें हैं उस पर काम करना, ना कि उससे भागना है, ना तो उसे छोड़ना है, उसे समझना है. समझने के लिए हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन हाँ, जितना हम उसे समझेंगे उतना उस पर हम काम कर सकेंगे. फिलहाल कार्यक्रम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और फेसबुक लाइव पेज से भी आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं. तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बातचीत के साथ साथ प्यारे प्यारे से गीत जो है वो भी आप सभी तक पहुंचाते हैं. तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत.

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ चुके हैं कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो बिल्कुल हमारे एक लिसनर का मैसेज था और कोशिश की है कि वो जवाब उन्हें मिल गया हो, क्योंकि उनका सवाल था कि हम जो है अपने अंदर कैसे इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि हमें साइको रिलेटेड कोई बीमारी जो है वो मतलब शुरू हो रही है, उस बीमारी की शुरुआत हो रही है हमारे शरीर में, हमारे अंदर। तो वो मैम ने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की और उम्मीद करते हैं कि जिनका सवाल है उन्हें उस बात का जवाब जो है वो मिल गया हो उस बात से। और इसी के साथ दोस्तों एक जो लिसनर है हमारे वो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कनेक्ट करते हैं उन्हें इस बहुत ही खास बातचीत में। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: सोहन बोल रहा हूँ, कालमपुर से।
0: जी हाँ जी सोहन जी, बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य पे और प्रियशी मैम जो है हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर आप कोई इससे जुड़ी बात जो है साझा करना चाहते हैं या इस पे कोई समाधान चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए।
1: अच्छा मैम, जैसे एफलिसिया का मरीज जो होता है ना, तो ये तेज बढ़ जाए तो उनको भी इसका कुछ असर रहता है, जैसे याददाश्त कमजोर हो जाना या चिड़ापन और किसी के साथ जैसे लड़ाई झगड़ा एकदम हाइपर हो जाना।
2: जी जी बिल्कुल। किस तरह की बीमारी का नाम लिया आपने?
1: एफलिसिया।
0: एक बार थोड़ा सा क्लियरली बताएंगे सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है।
1: दौरा जो होता है, जैसे मिर्गी का दौरा और
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, मिर्गी के दौरे। जी, मिर्गी के दोहरे जब आते हैं तो उससे ब्रेन की फंक्शनैलिटी पर असर पड़ता है, ब्रेन जिस प्रकार से काम करता है उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन के कुछ सेंटर्स जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, उनमें समस्या आ सकती है। तो इसीलिए आपने जैसे बताया कि चिड़चिड़ापन होना, लड़ाई हो जाना, तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं कहीं से, या जिनके भी प्रति आपने ये प्रश्न पूछा है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कहीं से? फोन कट गया
0: श्रोताओं, किसी वजह से शायद फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आप दोबारा से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, या तो मैम ने जो सवाल किया है आप उसे व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम जो है। हेलो हेलो हेलो हेलो सर, आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट हो चुकी है रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो मैम आपसे सवाल कर रहे थे कि जो आपने सवाल किया है जिनसे भी रिलेटेड, तो प्लीज आप उसके बारे में बताएं। तो मैम आप इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह से इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो कर
2: देखिए एपिलेप्सी, इसको एपिलेप्टिक सीजर्स बोलते हैं, ये जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इसमें ब्रेन की फंक्शनैलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। ऐसा समझिए कि ब्रेन में झटके आते हैं हाई वोल्टेज होने की वजह से, तो जो ये हमारे जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रहते हैं ब्रेन में, उसमें ज़्यादा वोल्टेज चला जाता है तो ऐसे झटके आते हैं जिसकी वजह से इंसान को दोहरा जैसा एक्सपीरियंस होता है।
0: जी।
2: तो जब ऐसा होता है तो जितनी बार वो सीजर्स का अटैक आता है, एपिलेप्टिक अटैक आता है, उतनी बार ब्रेन में उस वोल्टेज की वजह से जो ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो सकता है। इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जो अवेयरनेस हो वो लोगों तक ज़्यादा देर दूर तक पहुँचे, जिससे कि उनके इलाज में देरी ना हो। क्योंकि अगर देरी होगी तो फिर दिक्कत आएगी और उसका इम्पैक्ट फिर उनके कॉग्निटिव फंक्शंस पे, सोचने की क्षमता पे, इमोशंस

0: की बात आती है जी, ये शब्द ही जब हमारे सामने आ जाता है, दिमाग संबंधी या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी हम फेस करते हैं, जैसे अभी इन्होंने बात भी की, तो अक्सर हम जब भी हमें ये एडवाइस किया जाए कोई जिनको जागरूकता है इस बारे में कि हाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे डिस्कस कीजिए इस पे, जो समाधान आपको मिल सके उनसे बात कीजिए, तो लोगों को ऐसा लगता है जब समाज में ये बात की जाती है तो समाज के लोगों का कहना होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो पागलपन से जूझ रहे हों, या फिर हम उनके पास जाएंगे तो शायद लोग जो है हमें पागलपन का टैग लगा दें कि शायद इनको कोई उससे रिलेटेड बीमारी है, ये तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो इस स्टिग्मा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये लोग इस बीमारी को फेस करते हुए भी इन बातों के चलते इलाज को डिले करते हैं तो क्या हमें फेस करना पड़ सकता है, किस तरह से हमें इस पर काम करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे हम जब पैदा होते हैं तब हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, एक बॉडी और एक माइंड
0: जी,
1: और ये दोनों ही हमें प्रकृति से मिले हैं, हमने खुद से तो इनको उपज नहीं करी है इनकी, है ना। और जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं, यहाँ तक कि जो चीज़ें मैन मेड भी है ना, जो आदमी इंसानों ने भी बनाई है, उनका भी अपना कोई ना कोई पर्पस है। जैसे हमने बताया उनका कोई सिग्निफिकेंस है, कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, लाइट, पंखा, हर चीज़। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, धूप है, पानी है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, उन सब का अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन है और हमारे मन में आते हैं हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा व्यवहार। तो बेसिकली ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर प्रकृति से कोई चीज़ हमको मिली है और हम उसको बोले ये तो ईविल है, ये तो ख़राब है, ये तो राक्षस है, ये तो डायन है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई, है ना। मतलब प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी, अब जैसे थॉट्स हैं, अगर थॉट्स नहीं होंगी तो क्या होगा, इंसान किसी भी प्रकार की लर्निंग नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो बातें नहीं कर पाएगा। अभी जो हमारा अभी बातें कर रहे हैं वो ये वार्तालाप जो कर रहे हैं वो ये भी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि माइंड ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने आपको आपके पैदा होने से पहले से ही मदद करी है, उसने आपको जीना सिखाया है। जो हमारी लर्निंग है, हमारा डेवलपमेंट है, हमारी मेमोरी है, हमारी लैंग्वेज है, यहाँ तक कि हम जो भी स्किल्स को सीखते हैं ना, बी एट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक कोडिंग करना सीख रहा हो, या फिर एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाना सीख रहा हो, या एक मैराथन रनर, ये सभी में इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेमोरी का पार्ट, मेमोरी किस चीज़ का पार्ट है, माइंड का पार्ट है
0: जी।
1: तो आप माइंड को अपने जीवन से तो अलग कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि मैं अपने विचारों को, अपने इमोशंस को दबा दूं, सप्रेस कर दूं, तो ये तो वो बात हो गई कि आप प्रकृति के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप प्रकृति के विपरीत दिशा में जाएं और आप सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा जीवन में, तो ये तो एक मिथ है,
0: बिल्कुल
1: ये एक इल्यूजन है और ये आपको बहुत नुकसान देगा जीवन में। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ इंसान की वही हो सकती है जब इंसान प्रकृति से जुड़कर प्रकृति के जो गति है और प्रकृति का जो एक दिशा है उसकी तरफ आगे बढ़े, उसकी तरफ आगमन करे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि आप खुद भी प्रकृति हैं और आपको अपने माइंड के प्रति चीज़ों को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ऐसे समझिए रुचिका, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम लोगों को पता है कि शरीर में हमें और लेयर्स डालने हैं, हमें मफलर डालना है, शॉल डालना है, कैप पहननी है, जिससे हमें सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि ये चीज़ें, परेशानियाँ ना
0: हो। बिल्कुल
1: ये चीज़ें हमें इसलिए पता हैं क्योंकि हमारे अंदर अपने बॉडी के प्रति एक्सेप्टेंस है और कुछ समझ है। लेकिन यही समझ और एक्सेप्टेंस माइंड के प्रति नहीं है, इसलिए इंसान कुछ भी कर रहा होता है। अब यहाँ तक कि जब आप देखेंगे कि समाज की, जैसे आपने बात करी, तो थॉट्स किसके पास नहीं है, सबके पास है। ओवरथिंकिंग होती है, क्या वो नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसको नॉर्मल बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से क्या अल्कोहलिज्म नॉर्मल है? नहीं है, बट उसको नॉर्मल बना दिया गया है। तो समाज के नज़रों से जो चीज़ आम हो चुकी है वो आम है नहीं, यहीं पर हर व्यक्ति को अपने भीतर खुद से, अपने आप से, अपने घर वालों से प्रश्न करना चाहिए कि क्या

0: चीज़ें हैं जो आम है, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो हेल्दी हैं, जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी, जिससे मुझे सक्सेस मिलेगी, या जो चीज़ें मेरे लिए रेलेवेंट हैं। तो जब तक इन चीज़ों के ऊपर इंसान खुद से सोचने की क्षमता नहीं रखेगा, अपना बल, अपने आप को प्रबल नहीं करेगा कि मैं अपने आप को क्वेश्चन कर सकूं, सिर्फ समाज के कहने की वजह से ना चलूं, तो तब तक ये स्टिग्मा इंसान अपने भीतर ब्रेक नहीं कर पाएगा। और माइंड इतना पावरफुल होता है, वो आपके लिए कितनी सारी चीज़ें करता है। अब जैसे हमें प्यास लगती है, तो प्यास क्यों लगेगी जब हमें डिहाइड्रेशन है? हमारी बॉडी हमें सिग्नल भेज रही है कि हमें पानी पीना चाहिए, तो हम पानी पीते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप पानी पीने की बजाय आप खाना खाने लग गए, तो आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको भूख लग रही है और आप सोचे कि मैं चलो सोने चला जाऊं, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। और क्या आपकी भूख खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। ठीक इसी प्रकार से मन आपसे क्या बातें कर रहा है, माइंड आपको क्या सिग्नल दे रहा है, उनको समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति है, प्रकृति से ऊपर तो नहीं है। तो ये इंसान की ईगो ही आ जाती है रुचिका, है ना, जो कि स्टिग्मा क्रिएट करती है और फिर अपने आप को उस स्टिग्मा से बाहर आने नहीं देती। और ये बात तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे तो थॉट्स नहीं आते या मुझे तो इमोशंस नहीं आते
1: जी,
0: है ना। तो थॉट्स और इमोशंस जिन जिन के पास हैं, हर उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि माइंड उनका उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कि बॉडी है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वैसे तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो अगर मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी चीज़ें गड़बड़ा गई तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि सोचने की क्षमता हमारे लिए बहुत मैटर।
0: देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं।
1: जी
0: जैसे आपके पास आपका फ़ोन है
1: जी,
0: या आपका पास कंप्यूटर है, लेट्स से, है ना, तो कंप्यूटर में कितने सारे हार्डवेयर डिवाइसेस रहते हैं, राइट? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा, स्पीकर रहेगा, माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, राइट? ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने शरीर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके भीतर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं
1: जी,
0: और यही ऑर्गन्स आपको मदद कर रहे हैं। आपके सारे ऑर्गन्स को पता है कि किस प्रकार से काम करना है
1: जी।
0: अब अगर आप कंप्यूटर ऑन करें और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो क्या आपका कंप्यूटर काम करेगा?
1: बिल्कुल
0: करेगा रुचिका।
1: सॉरी मैम, एक हमारे लिसनर है तो हम उन्हें जरूर कनेक्ट करना चाहेंगे। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार मैम, स्वागत है आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
2: थैंक यू जी।
1: जी तो बहुत कम समय जो है हमारे पास वैसे कार्यक्रम में बचा है, लेकिन हाँ आप प्रियेशी मैम के साथ जो है बात कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई बात है साझा करने के लिए या समाधान आप चाहते हैं, उससे एडवाइस चाहते हैं, तो आप जरूर मैम से बात कीजिए।
2: नमस्कार डॉक्टर जी।
0: नमस्कार जी।
2: मैम मेरी बेटी आपसे सवाल करना चाहती है, बोलती मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो इसको मैं कैसे रोकूं?
0: जी जी, देखिए ओवरथिंकिंग एक ऐसा साइन है माइंड का, जो वो ये कह रहा है कि ओवरथिंकिंग पहले तो किस चीज़ को लेकर हो रही है, कोई स्पेसिफिक थीम है तो वो थीम किस चीज़ के बारे में है, उसमें अगर जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने का पहले आप प्रयास करें। अगर ओवरथिंकिंग रैंडम है तो ऐसा समझिए कि आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है और आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। तो आप बॉडीली मूवमेंट करें, आप वॉक करें, आप नेचर से कनेक्ट करें, पानी के पास रहें, तो वो चीज़ें आपको मदद करेंगी। ओवरथिंकिंग के साथ साथ अगर और भी चीज़ें हैं तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम लोग रूट तक पहुंच पाएंगे।
2: जी मैम, फिलहाल तो मुझे इसने इतना ही बताया, बाकी अच्छा, मैं अच्छा। जरूर कांटेक्ट करूंगी।
0: जी आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानी आती है तो वो सिर्फ ओवरथिंकिंग ही नहीं, वो उसके साथ दो तीन भाई बहन लेकर आती है। तो और उसके आसपास जो भी परेशानी रहेगी उससे ज़्यादा समझ पाएंगे कि और किस प्रकार से ओवरथिंकिंग मदद मिल सकती है। बाकी उनके लिए क्रिएटिव आर्ट्स बहुत मदद करेंगे, तो किसी प्रकार की पेंटिंग है, स्केचिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डांस मूवमेंट है, ये चीज़ें उनको ज़रूर सहायता देंगी।
2: जी
0: जी,
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं। तो समय जो है वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों अलविदा लेने की ओर, लेकिन जाते जाते एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक जो है वो जरूर बनता है दोस्तों। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस खूबसूरत से गीत की ओर।
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: 91.9 ओमेगा हर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गढ़वानिंग धर्मशाला। और आज का कार्यक्रम कोशिश की है दोस्तों आप सभी के लिए खास बनाने की, क्योंकि 10 अक्टूबर 2026 का दिन है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा आज का ये खास दिन। तो मैम जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे और आज के दिन की जो थीम है उसके बारे में थोड़ा सा बात जो है हमारे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए।
1: देखिए आज जो है ये मेंटल हेल्थ डे है
0: जी।
1: और हर साल मेंटल हेल्थ डे पर WHO एक पर्टिकुलर थीम के बारे में बात करते हैं। आज का जो थीम है इस साल का वो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस रियल वॉइसेस रियल चेंज
0: जी।
1: सो देखिए बात ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से जूझता है, परेशानियों से बाहर निकलता है या परेशानियों में रहता है तो उसको बहुत अकेलापन रहता है। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं अगर आप उनका साथ दे सकें तो बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो एक इंसान को इंसान से जोड़ती है। और कोशिश करिए कि आप एक जजमेंट की बजाय आप उनका साथ दें। कई बार क्या होता है ना, रुचिका सलाह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार लोग झिझकते हैं कि अगर व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो हम उनको क्या सलाह दें, कुछ गलत ना बोल दें। तो आप कुछ मत बोलिए, बस आप उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उनके साथ थोड़ा बैठें और थोड़ी बात करें।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज मैम के साथ हमारा साथ बहुत ही खूबसूरत सा रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपना ये कीमती समय हमारे दोस्तों के लिए और हमारे लिए देने के लिए। और दोस्तों अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है और इसी तरह से जो है जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहती है और पहुंचाते रहेंगे दोस्तों हम आप सभी तक अवेयरनेस जागरूकता से रिलेटेड। फिलहाल इंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, इसी तरह से गुनगुनाते रहिए। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त कार्यक्रम संपन्न करने की रुचिका को, फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खास करके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातों की। धन्यवाद।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना नो शेयरिंग?
2: मामा
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई
6: है। इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
7: रेडी?

इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो तो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के नौ दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, काका की नौकरी
0: बैंक में। काका
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई,
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे। अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।

0: डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
4: 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई ऐसे।
5: oh, no. इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
4: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
6: रेडी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और इस बदलते मौसम के साथ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। उसी तरह से हम भी आप सभी का ध्यान रखते हुए हर हफ्ते आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो यही प्रयास हमारा भी रहता है और इसी प्रयास की कोशिश में हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं जानकारियों के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ। तो सबसे खास बात कि ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ते हैं हर हफ्ते इस खास जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अपने खास मेहमान मनोवैज्ञानिक प्रियशी जी का स्वागत करते हैं हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो मैम, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़कर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही उत्साह चेहरे पे रौनक जो है देखने को मिल जाती है। जी, तो मैम, हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास बातचीत लेकर आते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो अपने आप को अपनी जो है शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक हो, कोई भी हो, उससे अवेयर हो सके और वो जान सके कि आखिर हमारी जो ये आसपास की जिंदगी है उससे हटकर थोड़ा सा अपना आप भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खास बातचीत का। तो मैम, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो हमारी नींद है तो वो किस तरह से हमारे लिए, हमारी जिंदगी में जरूरी रहती है, क्योंकि ये जो समय है, आज का समय बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सभी का, तो ऐसे में हम अक्सर हर चीज की एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नींद को अवॉइड कर देते हैं। तो उसके बारे में हमने अपने दोस्तों से बहुत ही खास बातचीत की थी। तो थोड़ा सा एक हम छोटा सा रिकैप करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
1: जी बिल्कुल रुचिका। देखिए, नींद आज के समय पर एक लग्जरी बनता जा रहा है जबकि ये एक नेसेसिटी है। तो जब तक इंसान इस बात को अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक नींद से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में बनी रहेंगी। नींद से परेशानी होने के बाद सिर्फ नींद की परेशानी नहीं रह जाती, क्योंकि ये आने वाली कई बीमारियों को न्योता देती है।
0: जी,
1: ये अपने आप में तनाव से तो जुड़ी है ही, लेकिन अगर नींद में परेशानियां आती हैं तो उसके साथ साथ और भी कई परेशानियां आती हैं, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करी जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात करी।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि स्लीपिंग का पैटर्न आप सभी वैसे जान चुके हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये साइकिल रहता है, क्योंकि पहले तो हम ये नॉर्मली जानते थे कि बस सोना है और उठ जाना है, बस सोना है उठ जाना है ना। और लेकिन जब आपसे बात की और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करके हमारे दोस्तों को बताया

0: ये एक पैटर्न होता है जो कि एक साइकिल की तरह रिपीट होता है और पूरा ये स्लीपिंग पैटर्न हमें पूरा करना होता है।
1: राइट।
0: और उसी कड़ी में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर की।
1: जी।
0: तो दोस्तों आज की हमारी ये खास बातचीत स्लीपिंग डिसऑर्डर की रहने वाली है। आप सभी जानने वाले हैं कि आखिर स्लीपिंग तो हमने जान ली, लेकिन ये डिसऑर्डर जो इसके साथ जुड़ गया है शब्द, इसका क्या अर्थ है, इससे हमें क्या जानने के लिए मिल सकता है और इससे हम कैसे जो है खुद को दूर रख सकते हैं। तो मैम सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग पहले तो डिसऑर्डर है क्या और ये स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है।
1: जी रुचिका, देखिए डिसऑर्डर शब्द का मतलब है कि कोई चीज जो अपने नेचुरल ऑर्डर से ऑफ बैलेंस हो चुकी हो उसको डिसऑर्डर कहेंगे। जब हम लोग मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि नॉर्मली आम तौर पे जो चीजें होती हैं, अगर वो बिहेवियर्स या वो फिजिकल साइंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी आम से ज्यादा या आम से कम हो जाए तो वो बहुत ही चिंताजनक बात होती है। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन में या हमारे ऑक्यूपेशनल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में या फिर हमारे रिलेशनशिप्स में पड़ने लग जाए तो वो भी बहुत गंभीर बात होती है। और तीसरा कि स्ट्रेस की वजह से हमारा ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट आने लग जाए और आप इन परेशानियों को जितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें वो सॉल्व ना हो पाए। आप अपने दोस्तों से बात करें पर वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लगे, आप ओवरथिंक करके उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें और वो ओवरथिंकिंग कभी खत्म ही ना हो।
0: जी।
1: तो जब इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं व्यक्ति को तब ये बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करे क्योंकि ये अपने आप में एक डिसऑर्डर का साइन होता है। सो इससे पहले बहुत देर हो जाए ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हम जानते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए अगर आपको इन तीन चार चीजों में से कोई भी एक पॉइंट भी लगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है तो उसको आप बचा सकते हैं।
0: जी।
1: नाउ कमिंग टू स्लीपिंग डिसऑर्डर, देखिए स्लीप के बारे में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी थी पिछले प्रोग्राम में।
0: जी।
1: जैसे कि स्लीप वेक साइकिल होती है और ये साइकिल हर 90 मिनट्स में रिपीट होती है। इस साइकिल के 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, NREM एंड REM। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में या तो आपकी जो फेजेस हैं, ये जो 4 फेजेस हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए या फिर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप है या क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। तो जब आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाए तब समझ जाइए कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है।
0: तो मैम सबसे पहले अभी आपने ये कहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में, तो इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग या क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग। तो हमारे दोस्तों को ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह से हमें फेस करना पड़ता है या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है।
1: देखिए यहाँ पे 2 चीजें, या तो हम प्रिवेंटिव मेजर की बात कर रहे हैं या फिर हम ये समझें कि ये समस्या आ कहाँ से रही है। राइट। तो पहले समझते हैं कि समस्या आ कहाँ से रही है जिससे कि प्रिवेंटिव हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए।
0: जी।
1: इसकी जो समस्या शुरू होती है वो कुछ यूं कि जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से इंसान एक ओवरथिंकिंग के फेज में चला जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो रात का टाइम होता है, रात के समय पे लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो एक तो जो हमारा माइंड है, माइंड भी 3 तरह के माइंड है हमारे, लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड एंड वाइज माइंड। तो रात के समय पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारा इमोशनल माइंड ज्यादा डोमिनेंट रहता है जिसके कारणवश इंसान की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है और थॉट प्रोसेस भी, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग के कारण वो एक लूप में चला जाता है और ऐसे करके वो अपनी स्लीप को डिले करता जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज जहाँ से स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं, क्योंकि स्लीप के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए पीस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेन वेव्स के बारे में भी बात की थी, तो यानी कि जब तक व्यक्ति रिलैक्स स्टेट में ही नहीं है, यानी कि ब्रेन में अल्फा वेव ही नहीं है, तब तक इंसान थीटा वेव तक कैसे पहुंच पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि वो नींद में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का रिलैक्स होना, पीस में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर तनाव है और अगर ओवरथिंकिंग है तो ये प्रॉब्लम जन्म लेगी ही लेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज के समय पे कई लोगों का जो डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट का काम

0: चलता है, जिसकी वजह से उनको अपनी स्लीप को डिले करना पड़ता है, तो वहां से भी प्रॉब्लम जन्म लेती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन सिंक विथ नेचुरल साइकिल। तो हमारी जो सर्काडियन रिदम है वो हमारे जो नेचर की एक डे टाइम साइकिल है, डे और नाइट की जो साइकिल है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, उससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम दिन को सो के रात को जग रहे हैं काम की वजह से किसी भी कारणवश, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है उस पे फर्क पड़ेगा, विच विल लीड टू फिजियोसाइकोलॉजिकल इश्यूज।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम इस स्टेज पे जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि स्लीप में जा ही नहीं सकते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस खास बातचीत के साथ। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो बहुत ही प्यारी सी आवाज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं, तो आइए दोस्तों इसी आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, आप सभी के मन की ओर। हमारे बहुत सारे प्रयास हैं लेकिन एक तो सबके लिए आम बात है, तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के इस बहुत ही खास बातचीत में दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर की। तो मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से एक जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल है वो प्रोसेस करता है, किस तरह से हमें उसे पूरा करना होता है, किस तरह से हमें अपनी स्लीपिंग के लिए अवेयर होना होता है। लेकिन अभी मैम ने बात की थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की कि किस तरह से क्वांटिटी जो है हमारी स्लीपिंग को मतलब कि स्लीपिंग डिसऑर्डर कहें या स्लीपिंग को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से ये हमारे इसमें प्रोसेस में आती है।
1: देखिए क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पर ड्यूरेशन से। तो अगर कोई व्यक्ति है जिनका स्लीप का ड्यूरेशन कम या ज्यादा है
0: जी,
1: तो उसको स्लीप डिसऑर्डर बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक एक्सपीरियंस है ऑफ लो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप या हाई ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक रहता है यदि परसिस्टेंटली, तो वो डिसऑर्डर का फुल ब्लोन एक रूप ले लेता है। अब देखिये जो व्यक्ति जिनको नींद कम आती है या फिर बोले उनको नींद में जाने में प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसा कहें कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है अगर वो 3 से 4 घंटे है कम है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम सिर्फ 2 घंटे ही ढंग से नींद आई है, तो ऐसे लोगों का ये जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि कम स्लीप, कम नींद आती है। और दूसरा होता है हमारा हाइपरसोम्निया जिसमें ज्यादा नींद आती है, तो इसमें एक्सेसिव स्लीप की डिमांड करती है बॉडी और माइंड, एंड व्यक्ति 10 से 12 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है, वो फ्रेश महसूस नहीं करता। इसीलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दिया गया क्योंकि इतना क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेने के बाद भी व्यक्ति को वो महसूस नहीं हो रहा, वो फ्रेशनेस या रिजुविनेशन महसूस नहीं हो रही है जो उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो उसे हम इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया का मतलब कि डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं।
1: राइट।
0: तो जैसे कि अभी आपने मैम कहा कि 3 से 4 घंटे मैक्सिमम या मिनिमम है ना किसी को भी, तो कुछ जैसे वैसे तो नेचुरली हमें नींद आती है जब स्टार्टिंग में हम इस प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट थिंग्स जैसे हम वर्किंग में आ जाते हैं, चाहे स्टडी का थोड़ा सा स्ट्रेस हो या फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का, और वो बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो शायद उसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं। कोशिश भी करते हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन फिर भी वो मतलब बातें घूम फिर के हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और जब वो सुबह का टाइम होता है ना, जैसे 3-4 बजे के आसपास का, जैसे आपने कहा कि सिर्फ सुबह थोड़े टाइम के लिए हमें नींद मतलब मुश्किल से 2 घंटों की नींद हम पूरी कर पाते हैं अच्छे से, तो शायद वो यही टाइम रहता है खासकर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शायद, तो उसे हम एक रूटीन में लाने के लिए कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, तो उसे हम कैसे मतलब कि एक उसमें सर्कल में ला सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, इसमें अगेन स्लीप हाइजीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
0: जी
1: देखिए, रात को समय पर नींद आ सके ये एक हैबिट है, तो हैबिट को बिल्ड करना पड़ता है। तो हैबिट को आप बिल्ड कैसे करेंगे? लगातार सेम समय सेम टाइम पर बेड पे जाने का प्रयास करें, एक ही समय पर सेम टाइम पर डेली अपने फोन का यूज करना छोड़ दें, सेम टाइम पर खाना खाएं, कहते ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो बेसिकली आपको अपना एक रात का रूटीन बनाना पड़ेगा, रात को अच्छे से नींद आ सके। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका शरीर थका हुआ महसूस करे।
0: जी,
1: क्योंकि जब शरीर थका हुआ होगा तभी वो रिलैक्सेशन की डिमांड करेगा, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत लगेगी।
0: जी,
1: और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति डे टाइम में अपने रूटीन में क्या क्या कर रहा है। आप ऐसे देखेंगे तो आमतौर पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं या फिर जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लोग सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फिर सोने का प्रयास करते हैं, सो नहीं पाते हैं और लैपटॉप चलता रहता।
0: जी
1: तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डे टाइम पर अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि लोग अक्सर शाम को, कई लोग नॉट अक्सर बट कई लोगों को हमने देखा जो शाम को या रात को जाते हैं जिम करने,
0: बिल्कुल,
1: जो कि इट्स अ बिग नो, क्योंकि जब आप जिम करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को और एक्टिव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप थक जाओगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी।
0: लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना रहता है
1: राइट
0: कि शाम के समय जब हम जिम पे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी थकान महसूस होगी और शायद हमें नींद आ जाएगी।
1: हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके, तो अल्टीमेटली जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। वो अपने मसल्स में सिर्फ टेंशन्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को भी रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉर्टिसोल कम कर रहे हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द रियलिटी विल बी कि आप और एक्टिव फील करेंगे, एंथुजियास्टिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपलिफ्टेड हैं, तो नींद नहीं आएगी
0: जी।
1: अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो डे टाइम में। तो आप सुबह जाएं एक्सरसाइज करने और आप डे टाइम में अपना दिन अच्छे से बिताएं। शाम को आप नेचर वॉक कर सकते हैं, विच इज रिलैक्सिंग एंड कामिंग एंड ग्राउंडिंग। शाम को आप योगा कर सकते हैं, अगेन कामिंग रिलैक्सिंग
0: जी।
1: तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिनको कैफीन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कैफीन मत लें शाम को। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत मायने रखता है
0: जी। तो मैम अभी हमने दो डिसऑर्डर की बात की है, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया की। तो इस डिसऑर्डर को जब हम फेस करते हैं, जैसे कि इंसोम्निया में बहुत कम नींद आती है और हाइपर में की एक्सेसिव में नींद आती है, तो जब हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कोई भी हमारे दोस्त या किसी तरह से, तो उसे दूर करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए कैसे हम क्या कर सकते?
1: देखिए ये स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके हैं आपको
0: जी।
1: इसके अलावा ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ देयर आर थिंग्स विच दे आर डूइंग जो उनको नहीं करनी चाहिए, या देर आर थिंग्स जो उनको परेशान कर रही हैं। तो कई लोग होते हैं जो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, अल्कोहल सिगरेट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेस में है और आपको ओवरथिंकिंग चल रही है रात में और उस वजह से आप नहीं सो पा रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि देन स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस यूं ही नहीं हैंडल होता है। अगर हो रहा होता तो आप उस समस्या में नहीं जाते, यानी कि देर आर थिंग्स, देर आर वेज एंड स्किल्स एंड टेक्निक्स जो आपको अभी नहीं पता इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू। उसके लिए आई रिकमेंड कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, और आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए रुचिका, स्ट्रेस के पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं जो लाइफ से रिलेटेड है
0: जी।
1: एंड स्ट्रेस या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करने के भी अपना एक प्रोसेस होता है। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, योर माइंड विल नेवर बी एट पीस, एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टेंट फाइट ऑफ थॉट्स, जिसके लिए काउंसलिंग सेशंस या फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से हम इस डिसऑर्डर के बारे में जान सकते हैं।
1: आप अपने नॉर्मल रूटीन से कम सो पा रहे हैं, भले ही वो 4 से 5 घंटे भी क्यों ना, लेकिन आप इतना सोने के बाद, देखिए कई लोग 4 घंटे सोते हैं पर वो फ्रेश फील करते हैं
0: बिल्कुल,
1: उनका वो रूटीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंसोम्निया है। देखिए डिसऑर्डर का मतलब है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उससे आपको वो परेशानी, वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो यानी कि अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं जबकि आपके 7-8 घंटे सोने की आदत थी
0: जी,
1: अब आप 5 घंटे सो रहे हैं पर उसके बाद आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा, आपको टायर्ड, आपको फटीग, आपको एंग्जियसनेस फील हो रही है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवरथिंकिंग चलती जा रही है, शरीर में हमेशा थकान और शरीर हमेशा टूटा टूटा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, मोटिवेशन लैक हो रही है, तो यानी कि अल्टीमेटली फोकस क्या है? फोकस है कि जितने भी घंटे की आप नींद ले रहे हैं पर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे और आपको उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब ये तकलीफ होती है तब उसको हम डिसऑर्डर का रूप देते हैं
0: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हर किसी के साथ ये नहीं होता, लेकिन हाँ, जब ये सारे सिम्टम्स जो मैम ने अभी बताए आपको कि आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी बॉडी में आपको डिस्टर्बेंसेस जो है फील होनी शुरू हो जाती है, तो तभी हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो यही एक्सेसिव हो चाहे कम हो, इसी तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी इस बातचीत को कार्यक्रम में आगे की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही खास बातचीत, स्लीपिंग डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जान रहे हैं कि किस तरह से स्लीपिंग हमें डिस्टर्ब करती है, किस तरह से जो है स्लीपिंग एक भयानक रूप ले लेती है, हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो यही सब जानने के लिए आप सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मैम से और बहुत कुछ जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं, जानते हैं और अपने आप को अवेयर करते हैं। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कम नींद आती है तब भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, या सबसे बहुत ज्यादा ही नींद हम ले लेते हैं तब भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, या हम उतनी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि जब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हर किसी के साथ कोई साथ में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग अकेले भी रहते, बुजुर्ग की हम बात करें, तो उस तरीके से जब उन्हें बहुत गहरी नींद में जब दबाव मतलब एक तरह से महसूस होता है, जब उन्हें बहुत एक भयंकर सा सपना वो देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि कोई हमें मार रहा है या कोई हमें हर्ट कर रहा है, तो इस एक्सपीरियंस को हम स्लीपिंग डिसऑर्डर में लेंगे या किस तरह से इसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? मतलब
1: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने REM स्लीप में होता है, यानी कि जो लास्ट फेज ऑफ स्लीप है, उसमें हमारा जो बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो अल्टीमेटली हमारे नेक के नीचे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस को शट डाउन कर देता है, यानी कि वी कैन नॉट मूव आवर बॉडी, जिसकी वजह से अगर उस फेज के दौरान हमारी आंख खुल जाए या हम अवेयरनेस में आ जाए, क्योंकि ये एक लास्ट फेज होता है, रिमेम्बर स्लीप वेक का एक साइकिल है जो रिपीट होता है 90 मिनट्स में, तो REM फेज के जस्ट बाद NREM का फर्स्ट फेज आ जाता है, जिसमें डेल्टा वेव से शिफ्ट आता है अल्फा वेव एंड थीटा वेव में। तो अगर अल्फा वेव आ गई तब जब REM फेज खत्म ही नहीं हुआ, ऐसे में व्यक्ति जग जाता है, यानी उसकी आंख खुल जाती है, पर क्योंकि उसके अंदर डेल्टा ब्रेन वेव भी प्रेजेंट है तो वो जो सपना देख रहा था वो कंटिन्यूड रहता है। ऐसे में कई लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। तो स्लीप में बेसिकली बोला जाता है कि जो भी सपना हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वो हेलुसिनेशंस ही होते हैं, क्योंकि वो हम आंख बंद करके हेलुसिनेट कर रहे हैं, बिकॉज सपना एकदम सच लगता है जो कि रियल नहीं होता, इसीलिए उसको हेलुसिनेशन
0: जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जब हमें वो सपना मतलब कि देख रहे होते हैं हम, और जैसे लग रहा होता है कि कोई हमें मारे, और हम रियल में ना चिल्ला रहे होते हैं नींद में ही, हम तो ऐसे मतलब कि जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, और जब तक कोई दूसरा पर्सन उन्हें उठाता नहीं है तो तब तक वो उसी एक पोस्चर में और उसी दर्द में जो है चिल्लाते रहते हैं।
1: राइट। तो इसमें देखिए, स्लीप पैरालिसिस में जो एक शिफ्ट आता है साइकिल का, ये उसमें डिसऑर्डर आ गया, वो ऑफ बैलेंस चला गया, ब्रेन वेव जिस समय पर जब होनी चाहिए थी तब की जगह वो पहले आ गई, तो अब जब व्यक्ति उठा है पर उसका नेक के नीचे के वॉलंटरी फंक्शंस तो अभी भी शट डाउन है ना, और सपना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जो सपना देख रहे थे वहां का कोई कैरेक्टर या वहां की सिचुएशन रियल है। समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो विटनेस एंड सी समवन स्टैंडिंग क्लोज टू देम, या फिर कई बार उनको लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है ये एक्सपीरियंस कि ये व्यक्ति में बहुत एंजाइटी क्रिएट कर देता है, डर क्रिएट कर देता है, और एंजाइटी का मतलब होता है अननोन फियर। तो यानी कि डर किससे लग रहा है हाँ, इंसान को ये भी नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता।
1: तो अननोन या अनसर्टेनिटी इंसान के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा डिसकंफर्टिंग होती है, और क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा है, सो पर्सन फील्स सो हेल्पलेस कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है ये और ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट इंसान ऐसी ही स्टेट में रहता है जो कि बहुत टॉर्मेंटिंग उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को इस समय समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है,
1: और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता तो इसलिए उनको लगता है कि कोई भूत की प्रेजेंस है या इस घर में कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, तो लोग अक्सर इस जो भी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती ना रुचिका, लोग उसको भूत से जोड़ देते हैं, क्योंकि भूत भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी लोगों ने बना रखी है कि उनको नहीं पता कि वो खुद क्या है, तो इसलिए हर वो चीज जो समझ में नहीं आती वो भूत से लिंक हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप सबका ये जानना और समझना कि कैसे स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्योरली साइंटिफिक कॉजेस की वजह से हो रहे हैं।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से हम
1: ये
0: इसे
1: देखिए डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्ट्रेस से जो भी तनाव है, क्योंकि देखिए स्लीप इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल दैट हैज टू अकर, जिसकी वजह से अगर कोई भी नेचुरल चीज डिस्टर्ब है तो मतलब देर इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। हमारा ड्रीम, जो भी हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जिसकी थ्रू हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कम्युनिकेट करता है कि देर आर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, पर हम अपने माइंड को उसकी आवाज को दबाना और उससे एस्केप करना या उसको अवॉइड करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विच इज सो रॉन्ग एंड सो अनहेल्दी फॉर ईच वन ऑफ अस, बट येट ड्यू टू अनअवेयरनेस वी टेंड टू डू इट, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए जो भी स्ट्रेस है या जो इमोशनल सप्रेशन है उसको ना करके, उसको छोड़ के अपने स्ट्रेस को एड्रेस करना जरूरी है, अपने इमोशनल सप्रेशन की जगह उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लाइफ में उनको रिजोल्व करना जरूरी है। जैसे जैसे वो चीजें रिजोल्व होंगी वैसे वैसे स्लीप की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहेंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब तक आपके माइंड में वो बातें चलती रहेंगी, जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि मैम ने कहा सबसे पहले तो हमें ये बहुत जरूरी है जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एड्रेस करना, स्ट्रेस है उसे भी अच्छे से जानने की किस तरह से क्यों और क्या रीजंस है, क्योंकि जब तक हम इससे फेस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो तब तक वो हमें परेशान करते ही रहेंगे और ये फिर स्लीपिंग का जो डिस्टर्बेंस है वो हमें हर टाइम जो है वो फेस करने को, और कहीं ना कहीं फिर बीमारियां, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है तो वो बस नींद ही डिस्टर्ब होगी, नींद ही नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां जो है फिर
1: वो हमें आएंगी, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करेगा, आप सही जजमेंट्स नहीं ले पाएंगे, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इन सबकी वजह से इंसान फिर और परेशान ही होता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका कॉन्फिडेंस होने लगता है, उसकी जॉब में परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ जाता है, रिश्तों पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है,
0: चिड़चिड़ा बिल्कुल,
1: मूड इम्पैक्ट होता है, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वन अनदर कि स्लीप का ध्यान रखना जरूरी है,
0: जो कि आज के समय में बहुत ही कम है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चों में तो खास करके बहुत ही कमी देखने को मिल रही है कि वो अक्सर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैम बच्चों को हम क्या रीजंस दे सकते हैं, मतलब बच्चों को जो नींद पूरी नहीं हो पाती है?
1: देखिए बच्चों के लिए तो आज के समय पे सबसे बड़ा कारण है उनका फोन और उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल। जैसे जैसे एक पेरेंट अपने छोटे बच्चे को रूटीन में डालेंगे ना, वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि बिहेवियर इज अ लर्नड बिहेवियर, आप बच्चे को सिखा सकते हो, और बच्चे क्योंकि बच्चा इज लाइक अ मोल्ड, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, यू नो वो एक सॉइल की तरह होता है, वो एक मिट्टी की तरह है, आपके ऊपर है ये कि आप उसको कैसे किस तरह का एनवायरमेंट और किस तरह का लाइफस्टाइल में उसको ढालना चाहते हो।
0: जी और मैम एक बात मैं यहाँ पे ये भी बताना मतलब कि जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के अगर अभी हमने फोन की बात की है तो वो तो हमें पता है कि एक फोन की एडिक्शन बच्चों के लिए बहुत ही गलत है, जो फोन वो रात भर यूज कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई का नाम दे रहे हैं तो कई बार बच्चे लैपटॉप जो है काफी लेट नाइट तक यूज करते हैं, फोन भी यूज करते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, क्या उससे भी स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए हर चीज हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है, अगर हम गलत टाइम पर सही चीज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो
0: सकती है। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर वो फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गलत है। लेकिन अगर वो उसी समय जो है लेट नाइट तक, चाहे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी, 2-2 बजे, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि 2-2 बजे तक सोते नहीं है, वो 2 बजे सोना है उन्होंने, तो वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं या फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं।
1: देखिए पेरेंट्स में ना एक बहुत स्ट्रांग सोच ये रहती है कि अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, हम उसको मेहनत से नहीं रोकेंगे क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन अगर आप इस आज के टाइम के दौर पे अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के साथ चीजों को देखें और समझें, तो आप ये समझिए कि व्हाट आर यू पुटिंग एट कॉस्ट, यानी कि आप बच्चे की नींद पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि नींद के दौरान हर व्यक्ति में उनकी ब्रेन सेल्स रिज्यूविनेट होती हैं, हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रीडेवलप होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तभी बच्चे को चीजें याद भी रहेंगी। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी कर रहा है, उसको चीजें याद भी नहीं रहने वाली हैं, और फिर उस चीज को याद रखने के लिए लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं रुचिका,
0: बिल्कुल,
1: और फिर पेरेंट्स के लिए वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज पेरेंट्स आप ये मत सोचिए कि बच्चा रात को पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आप ये सोचिए कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो काम बच्चे के लिए उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और जो नेचुरल चीजें हैं वो कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। अब इसमें क्या ही फायदा है कि बच्चे ने 2 साल या 3 साल 4 साल मेहनत करी, फिर वो कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज में जाने के बाद अब जब उसको नींद नहीं आती है तो वो रात में फोन चलाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और फिर वो सब्सटेंस लेकर अपनी नींद पूरी करता है, या सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा पाता, या फिर अपने यूथ में ही वो इतना फटीग फील करने लगता है कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो इससे एज पेरेंट्स आपने क्या ही अचीव कर लिया। पर आप सोचिए अगर आपका बच्चा 5-10% कम नंबर ले भी आए यदि, बट उसका जो एक रूटीन है या उसकी जो एक गुड हेल्थ है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बुरी आदतों से भी दूर रहेगा। सो व्हाट वुड यू प्रिफर? तो हम तो यही बोलेंगे एज पेरेंट्स को कि आप ये मत सोचिए कि एकदम से बच्चा एकेडमिकली पीक ले ले और उसकी मेंटल हेल्थ से अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो करे, क्योंकि उसके बाद मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद वो उसके रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन।
0: जी,
1: सो यू हैव टू थिंक कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रही थी और आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि अक्सर हम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स को वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। खैर अच्छी बात है, लेकिन हाँ हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, 2 दिन लगाकर हमने पढ़ाई कर ली और 1 मंथ लगाकर हमने बिस्तर पकड़ लिया, तो उसका फिर क्या ही फायदा रहेगा,
1: या
0: तो
1: फिर पढ़ लिया इतना और एग्जाम टाइम पे जाके ब्लैकआउट हो गया, याद ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा भी होता है बच्चों के साथ बहुत।
0: जी जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए और एक रूटीन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में अपने शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है और एक समय है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से गीत के बाद।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस बहुत ही गंभीर सी और खास बातचीत के साथ। तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी भी इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और जानते हैं मैम से और बहुत सारी जानकारियां स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैम, अभी आपने बात की स्लीपिंग पैरालिसिस की, तो वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नींद में, जब गहरी नींद में होते हैं या जैसे भी है, हम कहीं खो जाते हैं नींद में, तो हम कई बार ना रोने लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे इस मतलब कि डिसऑर्डर के साथ या स्लीपिंग के साथ? किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या ये क्यों होता है हमारे साथ?
1: देखिए, आप जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, इसमें अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई सपना देख रहे होते हैं और उनको वो इतना रियल लगता है कि फिर वो अचानक से जब उठते हैं तो उनको वो एंग्शियसनेस रहती है, उनको वो घबराहट, वो डर रहता है जो भी उन्होंने सपने में दिखा होता है, और फिर उनको अचानक से रोना आ जाता है। तो बेसिकली, और ऐसा भी होता है कि असली में, मतलब सपने में भी रोए और असली में भी रोने लगते हैं और फिर आंख खुलती है और इंसान जो है वो बहुत घबराया हुआ होता है, दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं। तो ये जो होता है, ये थोड़ा स्लीप पैरालिसिस से थोड़ा हटके होता है, इसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। तो ये नाइटमेयर डिसऑर्डर है। नाइटमेयर्स में बेसिकली जो हमारे सपने होते हैं वो इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि वो हमारा जो कोई भी पास्ट में वूंड रहा है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें बार बार आता है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है विद PTSD, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। जो लोग अपने पास्ट में एक बहुत स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ, लाइक नाइटमेयर थोड़ा अलग है दैन स्लीप पैरालिसिस, बट यस, दोनों में ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है।
0: जी बिल्कुल, तो ये भी हमारे स्लीपिंग का पार्ट है। तो अक्सर जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स हमें आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी नींद का, हमें वही फॉलो करना चाहिए, जो क्योंकि एक बार हमने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलती रहती है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि चाहे आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, क्योंकि नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर वे में लेना, जो साइकिल है स्लीप वेक साइकिल है, उसे पूरा होने के लिए समय लगता है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो उसी तरह से नींद भी उतनी ही जरूरी है। फिर हमें डार्क सर्कल आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं क्या लगाएं, क्योंकि हमारे फेस का थोड़ा सा वो फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं हम देखने में, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर फिर अपनाने शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस स्टेज तक जाएं ही ना,
1: बिल्कुल
0: आप पहले ही सतर्क हो जाए।
1: Exactly, आप प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व करें, उसकी गहराई को समझे, और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, नींद एक लग्जरी बनते जा रहा है, तो लग्जरी नहीं, वो नेसेसिटी है, इस बात को समझें और अपने जीवन में अच्छे से नींद को प्रायोरिटी दें।
0: जी बिल्कुल। पर दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग, नींद कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा शब्द है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको इतनी जल्दी जल्दी में तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट जो है हम जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, है ना? तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन आज की इस हमारी खास बातचीत से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है और अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर, हमारे मनोवैज्ञानिक मैम हैं, तो आप इनके साथ जो है जुड़ सकते हैं, और अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की, काउंसलिंग सेशन की, तो जरूर दोस्तों बिना हिचकिचाहट जो है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेशन

0: लेने चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि उसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी तक नहीं पहुंचाई जाती, तो पूरा आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, पहल आपको करनी होगी। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना होगा। तो हमारे सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, धर्मशाला, और फोन नंबर है 9354134057। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा
0: जी दोस्तों। तो आप सभी तक नंबर भी पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो फटाफट से फोन उठाइए, डायल कीजिए और बात कीजिए, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। पर अगर सवाल है जो हमें बात करनी चाहिए आप सभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक, या और लोगों तक आप चाहते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो है इस पे यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एडिशन करनी चाहिए या किस तरह से हमें बातचीत और इसमें एड ऑन करनी चाहिए। तो फिलहाल समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने एंजॉय की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ
0: जी। तो अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी के साथ फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: याद है ना, नो शेयरिंग।
3: मामा,
4: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
5: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार

0: जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
1: 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
2: ओह नो।
3: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
1: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
2: रेडी।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं हां तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने होए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी।
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना नो शेयरिंग
2: मामा।
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है ऐसे।
6: oh, no. यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
7: रेडी।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक त माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है कने इसी स्वागत कने तुहां सारे भी जुड़ी होने ने कने इंतजार जेड़े से तुहां जो रहंदे कि कालू दी या 2 बजे न कने कालू दी या तुहां सारी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़ते न ते इंतजार दी जेड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बिल्कुल खत्म है कन्ने जेड़ा शुरुआत है से जरूर अहां अपनी गलबात कन्ने करी थी हो है कन्ने तुहां भी इसी गलबात कन्ने अहां कन्ने जुड़ सकदे कन्ने पहले जेड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गलबात से कुथू ते बोला दे कन्ने तिना दा नां के है। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी। जी तो हाँ अपनी रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे जी।
1: एक मिनट मैडम जी।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी स्वागत है जी तो हाँ दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो तुहां अपना पहले ता ना दसी दिया जी कुथु दे रहने वाले ने कने
1: मैडम जी धर्मशाला दे विजय कुमार
0: जी। अच्छा धर्मशाला दे रहने वाले विजय जी।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो विजय जी क्या काम कार तो हाँ छेड़िया क्या करा दे आज।
1: बस मैडम जी बस रोटी खा दी जाएगा ना बस बैठे हैं जरा रेस्ट कर लेने का बोल दिया
0: जी। अच्छा इस टाइम तो हाँ जेड़ा से रेस्ट करा दे।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी जी तो आज का जेड़ा दिन है से तो हाँ दा कदिया की चल रहा जी।
1: मैडम जी दिन तो ठीक ही है।
0: जी अच्छा ठीक ही है तो

0: आज जेड़ा श्राद्ध अंत इन दी एंडिंग है ना जी, कने
1: हां जी मैडम जी, आज लास्ट है ना
0: जी, आज लास्ट श्राद्ध है कने इसी कने कल्ले ते जेड़ा नवरात्रे न सभी शुरू हो दे ना जी।
1: हां जी मैडम जी।
0: जी ता नवरात्रियां दी भी तोहां जो बड़ियां सारियां शुभकामनाएं हों जी।
1: तोहां मैडम जी,
0: जी क्योंकि 9 दिन जेड़ा है से रौनक वाला माहौल बनया रहना। वैसे तो कांगड़े दी अहां गल करिए या इतों की अहम गल करते हैं ना, तो रौनक वाला माहौल कांगड़ा मंदिर है या चुमंडा मंदिर है या ज्वाला जी मंदिर है या बगला मुखी मंदिर है, हर तरफ रौनक जेड़ा ने से लगी हो नहीं है ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी जी जी तो विजय जी, आज का जेड़ा तुहदा पसंद का गीत ऐसे कुंड दे है
1: अपनी मर्जी है ना मैडम जी।
0: जी मेरी मर्जी का सुनना है कि तुम अपनी पसंद का सुनना
1: है अपनी मर्जी है।
0: जी जरूर जी, तुम्हारी जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुंचा दी जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
1: जी
0: तो श्रोताओं, तुम सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तुम सारे भी कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते, गलबात भी तुहां तक पहुँचानी है कन्ने इसी कन्ने जेड़ा स्टूडियो दा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाई देना, क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा से करी सकते। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने इसी कने अहां अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से करते न इस गीत कने कने यही गीत अहां विजय जी तक पहुँचा देन से रहने वाले न धर्मशाला ते। वैसे तो तीन अहां तक पहुँचाई तो है पर जेड़ा श्रोता रेडियो सेट जो ऑन करना भूली हो या थोड़े देर लेट हुई हो तो तीन तक अहां ये जेड़ा फरमाइश है दीदी जेड़ा परिचय है से तुह तक अहां पहुँचाया है कने इसी कने अहां कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से इस गीत कने करा देना।

0: आ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा दिन अपनी रेडियो तो शशि कने फिर यहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ सारे भी मेरी गलबात कने जरूर जुड़ी होने ने कने इंतजार जेड़ा ऐसे तो हाँ जो रहा है कि कालू दिया जेड़ा दो बजते न कने कालू दिया तो हाँ इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ते न इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके न कर दें तेरा कन्ने गल बात। हेलो हेलो हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ने?
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा ना की है जी?
1: असां कनेडा ते बोला दे कने ना कमलेश कुमारी
0: जी। कमलेश कुमारी जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता कमलेश जी पहले तो हाँ अपने रेडियो सेट दी आवाज थोड़ी देर धीमी कर दें तो बड़ी अच्छी कर ले जी।
1: हाँ जी
0: जी जी कर लिया
1: मैडम जी। पहली बारी नंबर लगा है मैं
0: जी। अच्छा पहली बारी तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला च जुड़े ना?
1: नहीं मैडम ये मेरे डेली सुनने दी मात बोले जी ये काम नहीं हो कोई ना
0: जी जी
1: ता मैं दिखती ही रहती वैसे अगर जी ये काम हो है ता नहीं पे कुछ किया गया ता नहीं कने नंबर ये मैं मती बारी ये कितना
0: जी
1: आ फिर ये लगना ही नहीं थे कुछ बारी इस बारी अचानक ही लगी है
0: जी। तो बड़ी अच्छी गल है जी। पहली बारी तो हाँ कॉल लगाई कने तो हाँ जिड़े से रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जुड़ी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो पहले तो तुहां ये दसा कि तुहें जुड़ी करी कदिया लगा था?
1: बड़ा अच्छा लगा था मैडम जी।
0: जी जी क्योंकि हर दिन हाँ कोशिश कर देन पर जालू हाँ जुड़ी आन देन तो कुछ ना कुछ यहाँ जो अलग ही एहसास जिड़े से जरूर होंगे है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी। हाँ जी
0: जी। तो तुहां अपना ना नहीं दसिया जी?
1: मैं दसिया था मैडम जी कमलेश कुमारी।
0: अच्छा कमलेश जी।
1: हाँ जी हाँ
0: जी।
1: जी
0: तो कमलेश जी क्या काम कार तो हाँ छेड़िया क्या करा दे?
1: मैडम जी काम जरा घट ही है इन्हें लाई छोड़ दे अपना गुंदने दा सराइयां दा काम।
0: जी अच्छा गुंदने दा काम तो हाँ अल्ली भी कर दे?
1: हाँ जी हाँ जी करती मैडम जी। मैं
0: जी ताता तो हमें जो लगा था मुझे पुरानी याद अच पहुंचाई था।
1: हाँ जी मैं ना इन्हें लाई छोड़ दी कुछ ना कुछ दिन बड़े होंगे तो सोना सहना फिर तो राती नींद नहीं आती।
0: जी जी
1: जी तो सगला कुछ ना कुछ ले हुआ तो खरा रहा
0: जी। ता तो हाँ क्या क्या चिड़े से गुंदी रखिया?
1: गुंदी है क्या मैडम जी इन्हें रखा तो हाई बच्चे दिए मुनिया दे बच्चे नगा दिन अभी ये कोटियां स्वाटर दे दे हल्के हल्के गुंदे रहते।
0: जी जी जी। एक तो हाँ बड़ी सही गाल बोली कि जालू जैसे कोई भी न्यू मेंबर आ दे घरे चोंदा है ता हर नानिया जो भी चाह होंदा कि कल दिया तीना वास्ते हां छोटे छोटे है जेड़ा जराबड़ू आन है गुंदे न स्वेटर तीना जो बनान देन या छोटे छोटे कपड़े जेड़ा ने से खुद ही सिलाई कर देन ना जी।
1: हां जी
0: पर आज कने दौर दी हां गल करिए ता तोहे क्या लगदा है चीजां दिखने जो मिलला दियां किन्नी?
1: मैडम अजकल सब मुल्ले दे चले
0: जी। ता मुल्ले दे च कने जेड़ा खुद बने तिस क्या तोह जो अंतर लगदा?
1: मैडम जी तो हुण हां तो मुल्ले दी लांदे नहीं मैं तो अपनी गुंदे लांदी ही।
0: जी जी अच्छा जी। तो हाँ अपने ही जेड़ा खुद जेड़ा गुंदे न तीना जो ही लगांदे न?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चाहे से कोटियां न चाहे से स्वेटर न चाहे से ग्लव्स न चाहे से जराबा न सर्दियां दा मौसम वैसे भी चली पिया तो अहां जो आस रहंदी है कि अहां कुथी ना कुथी अपनी जेड़ा बुढ़िया चीजा न तिना जो पहन भी कने से अच्छियां भी लगदियां ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। कने तुहां बड़ी प्यारी गल बोली कि तुहां अल्ली भी इस चीजा कने जुड़े हो ता कई बार होंदा ना कि अहां सब कुछ छड़ी त्या ना जी सब
1: हाँ जी।
0: क्योंकि हाँ सारिया चीजा हूँ मशीना पर निर्भर हो अगर अहाँ धाना की गल करिए खेती बाड़ी भी ज्यादातर अहाँ हूँ मशीना पर ही निर्भर है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। कने इसी कने छोटी मोटी जेड़ा चीजा न जिन्हें तो हाँ कोटियां गुंदे न ता थोड़ा दिया जेड़ा हाथ न तिना दी भी एक्सरसाइज होंदी रहती क्योंकि दीदी पर अहाँ काम कर दे ना अहाँ जेड़ा हाथ से काम करा दे कने अगर
1: हाँ जी
0: काम नहीं करते ना तो कुछ ना कुछ यहाँ की जरा स्वास्थ्य है स्वास्थ्य पर भी असर जरा है से जरूर पौंदा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी
0: जी जी तो बड़ी अच्छी गल तो हाँ बोली जी कने मिंजो भी जेड़ा खुद गुणिया जेड़ा स्वेटर हैं से बड़े अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी
0: जी जी जी तो कमलेश जी तो हाँ आज कुन दिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: मैडम जी सुनाई दिया कोई भजन वगैरह माता दे लगी पौने नवरात्रे करना
0: से शुरू इसी करने तो जो नवरात्रे दी है भी ढेर सारी शुभकामनाएं उन जी
1: मुश्किल हो जाती फिर
0: जी जी जरूर जी फिर रेगुलर पूजा पाजा करना पौंदी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा स्वागत है इस कार्यक्रम च कने इसी कने इतना ज्यादा तुह सारे इस कार्यक्रम च प्यार दिंदे न इस वास्ते भी तो शशि जी गाना जेड़ा से बड़ा अच्छा प्ले जेड़ा से तुहां कीते है कजो नैन मिलाए तो ये गीत जेड़ा न से अलग ही अंदाज जो एक दुए ने जोड़ी के रखते न धन्यवाद जी इंदू जी इतनी तुहां कार्यक्रम जो सुनते न इस वास्ते तहे दिल ते तुहां सारे दा ही धन्यवाद तशो तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते कन्या हाँ कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते ते इसी कने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे जेड़ा सफर है उस जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न थोड़ा जहा जेड़ा नज़र है से मोबाइल फोन की ओर दौड़ाते न क्योंकि श्रोता जेड़ा न से यहाँ तक फरमाइशा व्हाट्सएप के माध्यम ने भी भेजते न तो तिना का ना तुह तक पहुँचाते न तिना का ना वे सुनील कुमार जी से नमस्ते करा दे सुनील जी तुह जो नमस्ते कने तिना तक एक गीत अहाँ पहुँचा देन से रहने वाले न कोठिया जलोट ते तो जरूर कोठिया जलोट तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन कने जितने भी श्रोता न सभी अपने फेसबुक के माध्यम कने कमेंट ने अपनी जेड़ा फरमाइश है सभी भेज सकते कने कल बात जेड़ा है सभी जरूर करी सकते तो ये फरमाइश तुह तक पहुंचा दी है इंजॉय करा इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये फरमाइश फिर ते हाँ वापिस पहुंची आंदे न 10 अक्टूबर 2026 दी गल करिए ता आजकना जिहड़ा दिन है से तो हाँ वास्ते बेहतर खास है। शनिवार दा दिन तो हाँ जरूर इंजॉय करा देन कने इसी कन्ने इस वक्त जिहड़ा इंजॉय करा देन कार्यक्रम माटी दी महक। माटी दी महक कार्यक्रम जिहड़ा है से तो जो हमेशा अपनी मिट्टी कन्ने जोड़ी के रख दी है तो हाँ भी जरूर अपनी मिट्टी कन्ने जुड़े न अपने जेड़ा छोटे मोटे काम मन तिना कन्ने जरूर जुड़े होने न ये छोटे मोटे जेड़ा काम मन से यहाँ जो बड़ी खुशी जेड़ा है से दिन देन कने इसी कन्ने आज जेड़ा कार्यक्रम च खास दिवस बना देन से बना देन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जेड़ा है सभी आज यहाँ बना देन कने इसी कन्ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी जेड़ा है से बना देन। अधिकतर तौर पर जेड़ा है से वैसे तो 11 अक्टूबर जो बनाया जाता कने जेड़ा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है से आज यहाँ 10 अक्टूबर जो जेड़ा है से बना देन अपनी जेड़ा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हाँ वास्ते कितना जरूरी है। इसी कन्नै अगले जेड़ा श्रोता न से अहां कन्नै जुड़ चुके न कर दें तिना कन्नै गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी कैसे हो आप
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च जी। तोहां कुत्थु ते बोला दी कन्नै तोहंदा नां की है जी?
1: मेरा नाम प्रिया और साईं ते बोला दी
0: जी। प्रिया जी रसाईं ते बोला दे
1: हां जी
0: जी। तो प्रिया जी आज कना जेड़ा दिन ने से कदे है की चलया तोहां दा क्या कामकार तोहां करा दे?
1: कोई कामकार नहीं है मनु है दिखने दी जिम्मेदारी
0: जी। अच्छा जिम्मेदारी जेड़े से मनु है दिखने दी है?
1: हां जी जी
0: जी। चलो ये जिम्मेदारी भी खूब ही निभाना भी जरूरी है ना जी।
1: हां जी
0: जी जी जी। ता प्रिया जी मौसम क्या बोला था आज कना?
1: मौसम ता आज थोड़ा धुप्पा भी है ना बदल भी है
0: जी। अच्छा धूप भी लगी हो बदल भी है बदल ओखा भी है।
1: हां जी
0: जी जी। ता प्रिया जी कदे लगा था तो जे कार्यक्रम
1: अच्छा लगता है
0: जी तो हां अपने रेडियो सेट दी आवाज अगर कम करी लेन ता जेड़ा आवाज डबल हो दिए से यहां तक नहीं पहुंचनी ना जी। हेलो
1: जी
0: करी थी तो हाँ काम आवाज?
1: हाँ जी
0: जी जी। तो प्रिया जी आज कना जेड़ा फरमाइश है से कुन दे ये तो हंदी?
1: मिट्टी दा बनाया गणेश
0: जी। मिट्टी दा बनाया गणेश जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुँचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा जी। तो श्रोताओं तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने हाँ कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जेड़ा नंबर है से तो हाँ तक फ्री ते पहुँचाई देन क्योंकि नंबर तो हाँ तक पहुँच जाऊँगा ताई तो हाँ इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जेड़े से जरूर करी सकते। नंबर फ्री थे तो हाँ तक पहुँचा देन तुहदा तो जेड़ा काम मैं से नंबर नोट करना है। नंबर नोट करा नंबर है 7081117091। नंबर तो हाँ तक पहुँचाई तय इसी कन्ने हाँ फ्री थे थोड़ा दे आगे बढ़ते न कन्ने कमलेश जी तक ये फरमाइश हाँ पहुँचा देन फरमाइश तीना तक हाँ ये पहुँचा देन तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला फिर यहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर समय दी और नज़र दौड़ाइए तो समय जड़े से 2:34 कार्यक्रम चो कने तो हाँ सारे भी समय के अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर च कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। समय का जड़ा दौर है से हमेशा चलता जाता है पर हाँ समय का जड़ा सदुपयोग है से किस तरीके ने करते हैं से यहाँ पर निर्भर करता है निर्भर ताई करता है जल वहाँ हमेशा हर दिन जो इंजॉय करते हैं जीवन दी जड़ा छोटी छोटी जड़ा सीख है से यहाँ जो बड़ा सबक जड़ा है से जरूर दे करी जानियां न कोई भी छोटी सीख जड़ा से यहाँ ले सकते तो शुरू कहानी जड़े से आलू कने जड़ा अंडा है कने कॉफी दी कहानी है क्योंकि समझने वास्ते जड़ा दो लफ्ज़ हैं सब यहाँ वास्ते बड़े मायने जड़ा न से रखते न एक जड़े से बेटी होंदी से अपने पिता जो ये बोलती है कि अपने पापा जो ये बोलती है कि जीवन च बड़िया सारिया जड़ा समस्याएं न से हैं तो मैं इन्हें समस्याएं तो जड़ा से जरूर थकी हो है कन बस उन मेरे ते जड़ा से नहीं आता तो इसी कन्ने पिता जड़ा से अपनी बेटी जो जो जड़ा से किचन च ले करी जाता है कन्ने तीन जड़ा भाग हैं या तीन जड़ा बर्तन हैं तिना च पानी जड़ा से अलग अलग गर्म जड़ा से करता है पहले जड़ा से आलू फिर जड़ा दूसरा जड़ा बर्तन है तिश जड़ा से अंडा अंडा जड़ा से तिश बनाते न कने इसी कन्ने कॉफी जड़ा से उस जो भी बनाते न तो आलू की अहाँ गल करिए आलू जड़ा न से नरम हो जाते न कने अंडा जड़ा से सख्त हो जाता है कने कॉफी की गल करिए कॉफी जड़ा से खुशबूदार बनी करी जड़ा से आई जाती है तो पापा यानी कि अपनी जड़ा बेटी जो समझाते न कि मुसीबत जड़ा न सियाँ की जिंदगी च बड़ी सारी आदिया न पर उसका जड़ा हल है सभी अहाँ जो खुद ही निकालना है पर सियाँ पर निर्भर करता है कि आलू जड़ा से जड़ा आलू पहले सख्त होता था फिर से जलू पानी च उबली आता है कने फिर जड़ा तैयार हो जाता है तो से कुथी ना कुथी नरम हो जाता है कने खाने जो भी अच्छा लगता है इसी कने जड़ा अंडा होता से भी थोड़ा सख्त हो जाता हर जीवन च जड़ा से हर कुसी दा जड़ा व्यवहार है से अलग अलग तौर पर होता हर इंसान दा जड़ा व्यवहार है से अलग अलग तरीके ने है या सोच समझ जड़ा से हर इंसान दी अलग अलग है पर हाँ अगर खुद जो उतना ही कमज़ोर समझते न तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी जिंदगी से जड़ा सफलता है से ज़रूर हासिल जड़ा है से नहीं करी पाते न बस अहाँ जो सीख ही मिलती है कि मुसीबत जड़े से अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जाती है पर फ़र्क अहाँ जितना है कि अहाँ टूटी आते न कि अहाँ कठोर बनी आते न या अहाँ तिना मुसीबत च अपनी जड़ा जड़ा मुसीबत न सियाँ के सामने आई हैं तिना जो अहाँ ताकत बनाई लेंदे न सियाँ पर निर्भर करता है तो शुरू इसी कन्ने जड़ा गल्ला बातों का जड़ा सिलसिला है से हमेशा चले रहता है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च हाँ कन्ने जुड़ी सकते कने हाँ कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते गलबात अहाँ फिर तो इतों ही रोकनी है कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर ले करी जाना है अगली फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो वह प्रिया जी की कने से रहने वाले न रसां ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचा देना तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने हाँ फिरी ते वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात उपर कने तो हाँ सारे भी अपने जेड़ा काम कारण सभी करा दे उन्हें न कने कई बार होंदा ना कि काम कार जेड़ा न सभी यहाँ जरूर करते न कने रेडियो सेट भी जरूर ऑन करी कर रखते न करना तो बनता है ना काम भी जेड़ा ने सहंदे चले रहेंदे कन्ने कुथी ना कुथी यहाँ अपना जेड़ा मन है सभी रेडियो कन्ने लगाई कर रख दे ना कन्ने अपने जेड़ा पसंद दे गीत हैं सभी यहाँ सुन दे ना तो इसी कन्ने यहाँ फिर ते थोड़ा दे आगे बढ़ दे ना कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे ना तो ज़रूर इस फरमाइशा जो इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सार यंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी गूंज कने हाँ फिर ते वापिस आई हो न कने जेड़ा गीत तो हाँ तक पहुँचाया से फरमाइश रहा तक पहुँची हुए टैक्स दे माध्यम ने तिना दा नावे वंदना जी तो जरूर वंदना जी तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम माटी दी महक जरूर इंजॉय करा देना कने इस कार्यक्रम

घरे ते स्कूले जो जाना है या कितने बजे यहाँ पहुँचना है, अगर कोई अपना जेड़ा जॉब वगैरह करता है तो तिना चो भी पता होंगे कि यहाँ अपने घरे ते कितने बजे जाना है। अगर थोड़ा देर भी यहाँ अगर बस ट्रैवल करते हैं या यहाँ बस पकड़नी है तो कुछ ना कुछ यहाँ जो समय का जरा से पता होंगे कने यहाँ उस तरीके ने ही अपना जरा समय के अनुसार चलते हैं, कने थोड़ा दिया भी समय तो अगे पिछे हो जाते हैं। समय तो यहाँ अगर अगे हो जाते हैं तो गलती जरा से यहाँ की होंगी है, क्योंकि समय तो अगर अहाँ थोड़ा दिया जिन्ना अगर 9:30 बजे अहाँ की बस जानी है कने अहाँ जो पता है कि बस अहाँ की जरा से 3 बजे ही निकलती है, तो कुछ ना कुछ अहाँ जड़ा समय के अनुसार चलना जरूरी है। फिर अहाँ जो जल बस निकल जाती है तलो अहाँ जो समझ आता है कि गलती जड़ा से खुद दी है कि अहाँ समय के अनुसार जड़ा है ना से नहीं चले। टाइम टेबल जड़ा से अहाँ की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, तो समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। तो हाँ वास्ते भी समय के अनुसार इस कार्यक्रम से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि तो हाँ सारे जो पता है कि हर कार्यक्रम का जरा समय ऐसे तो हाँ तक है कने तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जरा न से सुनते भी हैं, कने मनोरंजन का जरा साधन है सभी तो हाँ खूब इंजॉय करते हैं, कने जरा गलबात है सभी कार्यक्रम च करते हैं, कने कुछ जरा जानकारियाँ न सभी तो हाँ तक पहुँच दिया न। तो इसी कने हाँ फ्री तो थोड़ा दे अगे बढ़ते हैं, कने तो हाँ जो अगली जरा फरमाइश है तिहा दी ओर लेकर चलते हैं ना, इंतज़ार तो तुहां जरूर करा दे होने ने कि कल दिया अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक कहाँ पहुँचा देन। थोड़ा दिया और इंतज़ार करा, क्योंकि इंतज़ार दी जड़ा घड़ी है ना से तुहां वास्ते भी बेहतर लंबी है, कने अहां वास्ते भी बेहतर लंबी है। तो थोड़ा दिया इंतज़ार दी जड़ा घड़ी है से बिल्कुल ख़त्म है, कने तुहां तक अगली जड़ा फरमाइश है पहुँचा देन।

श्रोताओं तो सारे हैं कि तीन जो है किता कने थोड़ा जहा कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है से जरूर चेंज हो ही आना है क्योंकि कुछ ना कुछ ये गीत संगीत जोड़ा ने से अहाँ जो हमेशा एक ही दुए ने जोड़ी के रखते हैं कने जालू भी अहाँ ये गीत संगीत सुनते हैं तो कार्यक्रम का जोड़ा सफर है से थोड़ा जहा रौनक भरा जड़े से बनी आते हैं। इसी कने थोड़ा जहा जेड़ा तो हाँ अपना ख्याल भी रखना है क्योंकि अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जड़े से आज हाँ बनाते हैं मन जड़ा हाँ मन है ना मने दियाँ जड़ा गल्ला न से कुथी ना कुथी हाँ अपने कन्ने साझा करते हैं या तिना जो दसते हैं तो थोड़ा जहा हाँ अच्छा महसूस जड़े से करी पाते हैं कने अगर अहाँ अपने मने दियाँ गल्ला खुद तक रखते हैं तो से कुथी न कुथी सही गल्ला अहाँ जो परेशान जड़ा न से जरूर करतियाँ न। कई बार तो हाँ अपने अंदर दिखते होने न कि अहाँ चिड़चिड़ापन है या तनाव है या ज़्यादा सोचना कई बार होता ना कि अहाँ कोई भी गल है उसको ज़्यादा सोचना जड़ा है से शुरू करेंदे सभी अहाँ जो परेशान करना जड़ा है से शुरू करेंदी है कने अहाँ का जड़ा स्वास्थ्य है उस पर असर जड़ा है से कुथी ना कुथी जरूर दिखने जो मिलता है तो जरूर अपना जड़ा ख्याल है से रखना है कने कई बार होता ना कि अहाँ उदास हैं तो अहाँ हमेशा ये सोचते हैं ना कि अहाँ खुद जो किला रखना जड़ा है से ज़्यादा अच्छा समझते हैं पर सही अहाँ जो भारी नुकसान देख रही जानते हैं। आज के दौर की गल करिए ज़्यादातर अहाँ अपना जड़ा ज़्यादा समय जड़ा है से मोबाइल फ़ोन जो दे दे कने ज़्यादातर हाँ अपना मोबाइल फ़ोन या टीवी है या सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाँ अपना समय दे देन कने अपने जो समय जड़ा है से नहीं दे पा दे तो जड़ा मोबाइल फ़ोन जड़ा है से उसकी भी लिमिट होना ज़रूरी है क्योंकि लिमिट के अनुसार अगर हाँ चल देन तो हाँ कुछ ना कुछ अपने स्वास्थ्य का जड़ा ख्याल है से रखी पाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य जड़ा है सियाँ वास्ते बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हमेशा स्वास्थ्य ऊपर जड़ा है से गलबात करते रहते हैं क्योंकि जड़ा अहाँ का स्वास्थ्य है सही अहाँ वास्ते सबसे बड़ी दौलत है। दौलत भी इस अगे फीकी पे आती है जल वहाँ बीमार हो जाते हैं चाहे अहाँ कितना भी पैसा है फिर भी अहाँ उस पैसे का जड़ा है से कुछ नहीं कर पाते हैं अहाँ हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा हल है पर हाँ अपनी ज़िंदगी जो जड़ा है से नहीं बचाई पाते हैं तो इसी कन्ने अगर हाँ समय के अनुसार अपना ख्याल रखना शुरू करी देन क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ अच्छी लगती है कने समय के ऊपर हो तो कुछ ना कुछ से हाँ जो भारी नुकसान जड़ा है से देख रही जाती है। छोटी छोटी गलतियाँ अहाँ दियाँ जड़ा लापरवाहियाँ न सही अहाँ जो नुकसान दिंदियाँ न तो इसी कने कार्यक्रम च जड़ा समय है सभी थोड़ा दिया ही बचे है तो हाँ जरूर समय के अनुसार चलना है कने थोड़ा दिया जड़ा अगली फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं कने इसी कने तुह ते अनुमति भी जरूर लेनी है पर एक फरमाइश तुह तक पहुँचा देन

तो श्रोताओं इसी गीत कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपन।

0: जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दे, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है। ऐसे
6: यार, इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
7: रेडी?

मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर। कभी

किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3-2-1 करूंगा। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई
6: है। इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

हाँ जी नमस्कार जी, एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रो रहा हूँ। आरजे सचिन कपूर हाजिर बुझको जी तुंदे सभी रे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच। क्या हालचाल ने तुंदे? उम्मीद हा होप सो तो है सब खरे भुने अच्छे भुने बेहतरीन भुने और अपने घरे खुश और तंदुरुस्त भुने हिन। ता कार्यक्रम मंच बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने आ रहे रहे सभी श्रोतागण रहे। जें कि तो सब जान लें श्रोतों इस कार्यक्रम रे जरिए कि ऐसा है तुसु तक स्थानीय जानकारी पहुँचनते हैं और सोगी सोगी बिल्कुल जोइन दे स्थानीय मनु असोगी जुड़ देन इवन कि स्थानीय ना चंबा भरमौर और अन्य स्टेट थों भी कि ऐसा सोगी श्रोता जुड़ते हैं। तो है जो तैयारी फरमाइश है ना सो भी किया सो पूरी करते हैं श्रोतों। तो सब बाखूबी जुड़ी सकते हैं श्रोतों, अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं और अपने क्षेत्र रे जानकारी हो होके साझा कर सकते हैं। अगर तुसु लगता हा कि कोई जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक हा, कोई जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक हा, तो इस समय गल करिए श्रोतों। सब थो पहले धर्मशाला रे मौसम रे तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो इस समय धर्मशाला रे मौसम बन रहा है और ह्यूमिडिटी रे गल करूँ जतियो नमी बलते हैं अंग्रेजी में तो 83% की आसो ह्यूमिडिटी बन रही है, नमी किया आसो बन रही है। ते ता धर्मशाला रा हबजूरा मौसम जो है तुसोगे साझा करो हा शेयर करो हा। तो चलिए जी आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रा और आगाज तो बाद फिर बहुत सारी जानकारी कुछ एक स्टोरी जो लेकर आया है तुंदे वीडियो सेट में हाजिर बुंदे सो स्टोरी भी तुसो गया जरूर शेयर कर ले। लेकिन आइए जी आगाज कर दें कजो की बल दें ना कि भगवान किया सो हर जगह बुंदे न बस तुसो ना लेना किया ना लेने रहा टाइम किया सो लगना चिंता है। भगवान हर जगह बुंदे हिन और भगवान ता भी खुश बुंदे इन सो तो चहने कि अह कसीरा बुरा ना करन, कसीओ बुरा भला किया सो ना बन, कसीरा बुरा किया सो ना सोचन, ता भी भगवान किया सो खुश भुजगन दे हिन शतों। और आऊँ तक सर बोलनो शतों कि अपनी साइड थों कदी भी तुसो समय लगा टाइम लगा ता अपनी साइड थों किया सो खरा जरूर करू करा मनु रख जो कि यही के शतों सो कम महीना आगू किसी करे है ना। ता यही चीज अगेन सो कम में हिंदी इन शोतों। तो फिलहाल आगाज कर लें देना है कजो क्या है भगवान रना लेकर के सो आगाज कर दिन कार्यक्रम रा श्रोता गणा सो के कनेक्ट भी लगे भुने जरूर कर ले श्रोता जो कनेक्ट भी। लेकिन आइए जी आगाज कर लें दे हिन कार्यक्रम रा इस गीता सो के बने रहा तो है आरजे सचिन कपूर सो के गूंज अपने पन रही।

श्रोताओं, यह तो है बहुत ही प्यारे दे गीत के सो हुनु हुआ। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के सो बिल्कुल तुंदे वीडियो सेट में लाइव चल रही हैं और कार्यक्रम जो तो है बाखूबी हुनु कर देन बिल्कुल लाइव किया सो हुनु कर देन अपने अपने वीडियो सेट में। हम नाचीज सचिन कपूर अपना गादा कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर किया सो तुंदे अपने अपने वीडियो सेट में किया सो हाजिर बछूरा शोतों ता तो ऐसा बस वो कि बाखूबी जुड़ी सकते हैं जी जनाब जी हाँ रोज़ जुड़ दें तो है सब इंदे श्रोता इंदे बुजुर्ग इंदे हल्के हल्के बच्चे जो कि दूसरी LKG में फिफ्थ में सेवन्थ में नाइन्थ में पढ़ते हैं सो भी अस होगी किया सो जुड़ते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। नंबर आऊँ तो होगी ज़रूर शेयर करना चाहूँ हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। बहरहाल श्रोताओं दोते है त्यौहार और दोते है पहला नवरात्रा तो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आज की असो दिन अपने सभी श्रोतागण जो कि नवरात्रि तुसो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं भून और तुस वो दसना चाहता कि शारदे नवरात्रा नवरात्र के श्रोतों सो दो तथो शुरू हुई और शक्तिपीठ हम किया सो तैयारी बड़ी तेजी थो इवन की पूरी के न सो भुचे भी गछूरी हिन श्रोतों थोड़ी कई जानकारी तो वो गया है जरूर शेयर कर देने इस बारे अंदर। शिवी चुमुंडा नंदिकेश्वर धाम मा के सो 11 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्रि की तैयारी के सो पूरी लगभग के न श्रोतों सो भुचे ही गुछूरी हिन। अधिकारी राकेश कुमार दसो कि नवरात्रि रे दौरान श्रद्धालु भी सुविधा सुरक्षा स्वच्छता पेयजल विद्युत व्यवस्था सहित अन्य तैयारी जो किया सो अब लास्ट अंतिम रूप किया सो लूरा दीना ततियों भी किया सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बुछुअर लेकिन आका अंतिम राउंड किया सो मारना जरूरी बंदा हा शतो है ना जी। मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान रे वास्ते किया शतों सो काठ पंडित और सांस्कृतिक महाविद्यालय व बी छात्र व्यवस्था किया सो भू हर्षतों सुरक्षा व्यवस्था जो मजबूत करने वास्ते किया सो 45 पुलिस जवान और 30 होमगार्ड जवान के न सो तैनात करी दीने हिंदुत्ते जबकि 12 होमगार्ड जवान के न सो पहले थों किया शोतों सो मंदिर परिसर में तैनात

0: हिन। नवरात्रे रे दौरान छो तो नरेश आचार्य मुख्य यजमान रे रूप में के सो तिया पूजा अर्चना करने हैं, जबकि सुभाष चंद और मदन दीक्षित साहिक यजमान रे भूमिका के सो तिया निभाने हैं छो तो। इसी सो के छो तो हिमानी चुमुंडा में मनोज कुमार और पवन गोस्वामी यजमान रे रूप में के इन्या भी पूजा अर्चना करने हैं। और कांगड़ा में छो तो नगरकोट माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर मां 11 थों 20 अक्टूबर तक शारदाकालीन नवरात्रे जो लेकर किया सो मंदिर प्रशासन द्वारा तैयारी के न सो तेजी थों भुचुगुचुरीन और तेजी थों तिन्या किया सो पूरे फुल्ला हो गए मंदिर के असो चमकाईता श्रोता हूँ बिल्कुल रंग रोबन किया सो भुचिगो हा और व्यवस्था किया सो पूरी तरीके हो गई सभी शक्तिपीठ अंदर किया श्रोता हूँ सो व्यवस्था बड़ी अच्छी है। और दत्ता थों किया सो माता रानी रा ना किया सो जरूर लेना है और बिल्कुल भगवान रा ना जरूर लेना है। लेकिन यह गल्ला रा खास ख्याल रहे श्रोता हूँ कि जो घरे माँ बेखुरिया सो दुखी ना बुना चाहते सो बेकिया सो खुश रहना चाहते हैं हंसते रहना चाहते हैं मुस्कुराना सारे मुस्कुराहट किया सो सारे चेहरे थो ना गच्छा यह गल्ला रा भी खास ख्याल किया सो जरूर रखे। तो तुसु सब भी जो एडवांस में किया सो नवरात्रि री बड़ी बड़ी बधाई भून। चलिए श्रोतौता कार्यक्रम जो आया है हगो बढ़ंदे हिन और हाँ जी इन श्रोता गण हसु के कनेक्ट होंगे तो ऐह तू होगी भी किया सो ज़रूर कनेक्ट कर दे इन श्रोतों सभी श्रोता जो अब है नवरात्रि रे इन श्रोतागण के अंश हसु के कनेक्टेड हैं कुछ दिन पहले कौन बोल दिन और कड़ी थो बोलो करते हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते भैया जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हम बोल रहे हैं सिद्धवाड़ी से।
0: हाँ जी बहुत अच्छा लगता है खरा लगता है जहने भी सिद्धवाड़ी थों या इंदे लोकल एरिया थों जहने भी कॉल इंदे स्थानीय जगह थों तो है क्या जी तो है पहाड़ी में गल करी सक दिन कि ना इंदे पहाड़ी तुसु
1: आपने मुझे पहचाना है
0: ना जी
1: सिंगार ब्यूटी पार्लर।
0: अच्छा अच्छा फिर तो आप
1: हाँ
0: फिर तो है
1: आप बोल सकते हो गद्दी
0: हाँ जी दूसरों गद्दी की
1: हाँ वो भी समझ ऐसी आती है कि आप बोलते हो तो समझ आ जाती है।
0: अच्छा सिर्फ हम बोल देता है समझ इन बाकी बोल देता है इन
1: तो समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं।
0: चलिए जी सौभाग्यशाली मनो धन्यवाद और श्रृंगार ब्यूटी पार्लर रवि धन्यवाद कि जो है समय समय पर किया सो वेडियो सो के जुड़ दे हिन और असुओ प्रोत्साहित कर दे हिन कि तुसु गद्दी समझ गए सो चलें दिया बलना बेशक तुसु पहाड़ी भी नहीं दे लेकिन गद्दी तुसु समझ चलें दे था। थैंक यू सो मच जी श्रृंगार ब्यूटी पार्लर थों कौन बल्लू कर दे हिन।
1: मैं वहीं की ऑनर बोल रही हूँ मेरा नाम है रीना और आपको नवरात्रों की बहुत सारी मुबारकें हूँ आपके स्टाफ को और आपको।
0: अच्छा थैंक यू सो मच रीना जी थैंक यू सो मच और इन दी औरतों भी तुसु जो और तुंदे स्टाफ जो सभी जो किया सो नवरात्रे री बहुत बहुत शुभकामनाएं भून। रीना जी कुंडन गीत थोड़ा पसंद कर ले
1: आज ना कोई अच्छा सा माता रानी का गीत सुना दे क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है।
0: ओहो क्या बात है क्या बात है। तो रीना जी गिफ्ट श्रृंगार ब्यूटी पार्लर ही थी आंसू तो है पहुंचाएगा अच्छा केक कोई चक्कर नहीं आज खा ले ले
1: कोई बात नहीं वो तो हम खिला देंगे लेकिन आप अच्छा सा माता रानी का गीत सुना दे वो वाला है ना आजकल चल हाँ हाँ बस बस बस हाँ जी वो वाला।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी मेरा बड़ा फेवरेट भजन है और जरूर
1: ठीक है थैंक यू भैया।
0: ठीक है जी तुसो जन्मदिन की बहुत बधाई हो
1: धन्यवाद। थैंक यू
0: श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं और वाकई में मेरा बड़ा फेवरेट भजन और जस सिंगरे गुरु है तस सिंगर हो गए कांगड़े माँ मुलाकात भी हुई थी मेरे और आपके कार्यक्रम किया सो होस्ट करना गुचूरत हो श्रोता हूँ इनकी एज ए एंकर किया सो गुचूरत हो तड़ी किया सो इन होगी मेरी मुलाकात हुई थी। ता चलिए जी हुन दिन ए प्यारे दे भजन और यारा रीना जी राज बर्थडे था यारा जन्म वे उपलक्ष पर किया सो ए प्यारे दे गीत इन्यो है अपनी औरतों किया सो डेडिकेट करते हैं इन शोतों और सोगे सोगे इन दे एक और शो था कनेक्टेड इन पुस दिन नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार हेलो
2: हेलो हाँ जी
0: हेलो
2: सचमुच ठीक ठाक है
0: हाँ जी हाँ जी बढ़िया तो है बल्ला
2: नवरात्रि से भी कामना महाराज
0: महाराज तू सो भी दोते नवरात्रि लेकिन आज आज तो है शुभकामनाएं दीना की सुबह से शुरू करी थी तो तू सो भी बड़ी बड़ी मुबारक हूँ
2: मुबारक हूँ तो सही बड़ी बड़ी मुबारक हूँ जी
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
2: और घर बार सब ठीक ठाक है
0: हाँ जी सब ठीक ठाक है जी कुशल मंगल है तुम्हारा सभी का आशीर्वाद है घर परिवार ठीक है सुखदा
2: चलो ठीक है मुगना के लिए भगवान दे बाकी सब
0: बिल्कुल बिल्कुल हेरा शरीर में परिवार में किसी रोग ना लगा है ना और परिवार में सुख शांति रहा मानसिक स्थिति की आ सो ठीक रहते सुख शांति रहा तो अपू खरा लगता है ना हंसते खेलते रहन तो अपू खरा लगता है और फिजिकली फिट रहन तांबे किया सो अपू खरा लगता और अगर इन्हें में से कुछ भी चीज़ें गड़बड़ाएगा अंत इंसान की सो स्थिर ना रहता फिर इंसान की सो डगमगा जी जनाब कुंदन गीत होना पसंद करो
2: कर ये समाई जा जी धर्म मेरा जय लगदी तेरी कचहरी
0: ओ धर्म मेरा राजे आ तेरी लगदी कचहरी हो चलिए ठीक है जी पंकज भाई इतने बड़े से दोस्त
2: क्या नाम है जी कलाकार का नाम आ रहा नहीं मुझे पता नाम
0: कलाकार जी अपना बड़ा अच्छा दोस्त है यारी भी थोड़ी की स्थिति कुछ इस प्रकार रे वो चोरी थी मैं अब जो गाल बल्ले है तू सोगे थोड़ा परिवारिक सपोर्ट की सो बड़ा जरूरी चिंता है ना हर कलाकार वास्ते हर इंसान वास्ते कलाकार ना हर इंसान वास्ते भी थोड़ी करी बहुत अच्छे गायक ही ने लेकिन पंकज है यार ना ना जी
2: हाँ जी
0: पंकज सूर्यवंशी यार ना अवे उन्ना ने इस वक्त इस फील्ड जो की सो छड़ी चुक रहे हैं बहुत सारे कारण हैं छड़ने वास्ते सो बलदे ने कि चलाने वाले भी अपने बंदे और उतारने वाले भी अपने बंदे चलिए ठीक है जी जरूर गीत नमस्ते चलिए जो कार्यक्रम जो है और इस प्यारे दे भजन जो जरूर हूँ लेंदे इस भजन में बहुत प्यारा एहसास आ शो बहुत वाकई में ना रोल माइए मैं रोल गई तेरा दरबार
3: संतान पैदा होती है माँ

श्रोत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला 2021 को रॉ कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा गए श्रोताओं से चल रही तुंदे सभी रे रेडियो उस सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला में तो हम दसो कर दो तो श्रोताओं कि इंसान जाए कलाकार बोआ जाए इंसान नॉर्मल इंसान बोआ कलाकार भी ना बोआ तो इंसान रे जीवन में ना परिवार रा बड़ा अहम रोल किया सुरिंदा है श्रोतों परिवार में सेरे माता पिता भून सेरे बहन बुआ सेरे पत्नी बुआ सेरे बच्चे भून है ना सेरे भाई बुआ सेरे बहन बुआ मतलब इन सब भी रह गया सो बड़ा इम्पैक्ट रहा परिवार में क्योंकि परिवार का इन्वायरमेंट अगर अच्छा बुला माहौल प्यारा बुला प्यार भरा बुला नेगेटिविटी ना बुले दतियाँ और चिड़चिड़ाहट ना भूले अकी दुए जो लेकर प्यार भूला अकी दुए जो लेकर केयर भूले श्रोता हूँ तो परिवार के असो बड़ा फुल्ला ही है कि असो खूबसूरत लगता और फुलदा रहता है ना और जो इंसान करने वाला हों सो दुगना और ज़्यादा कि असो मेहनत करता और तरक्की करता है क्योंकि सो इन्वायरमेंट तस्सी मोलता है और सेम ऐसा ही शो तू अगर परिवार में ये सब के न इन्या में से अक भी पर्सन के सो खराब बुला शो तू तो इंसान के सुहागु ना बढ़े सकता है इंसान रा ध्यान सेरे फूक दड़ किया सो तट्ठिए लगी रन देन कि क्या बुआला कें बुआला घर क्या माहौल बुला कने उकड़ दे लै कि ना कने उन्दे लै गुड़ों दे लै कि ना गुड़ों दे लै क्या करूँ दे लै बाकी तने पै बुला कि दुए गुड़े तने पै बुला क्या कने इतना ला इसी में इंसान की हसो फिर उलझता रहता और सो हागू बढ़ने भी तो सोचा जो काम सो तिनिए लूरब हों सो भी काम सो स्थाई तरीके होगी कि असो ना कर सकता है जति मैं सेरी लाइफ में कि असो बड़ा ड्रॉबैक किया शो तो सो चलींदा हा तेरा आऊँ अक्सर जाने भी हब जो भी मेरे नज़र रहे सामने खबर है कि हरिपुर में कि असो फंदा लगाई कर व्यक्ति अपनी जान देते शो तो पुलिस तो जाँच करू कर दे लेकिन ये जांच कतिए दित्ते थोड़ा करे आऊँ दसना चाहता कुछ कि 41 वर्षीय के सो व्यक्ति हा अगर कोई मतलब इस सेज में जान दे छुकरदा श्रोता हूँ तब तो ये सोच सकते कि क्या परिस्थिति भुली सेरे अगो कितनी है सिर्फ अपने आप जो ख़त्म करना ही किया सो बेहतर समझो बुआ हाँ श्रोतों विकास चौधरी सेरा नाद सुगर्दन पुत्र सतीश चौधरी निवासी हरिपुर रे रूप में के सो पहचान भोया पुलिस रे अनुसार आत्महत्या रा किया सो ये मामला पुलिस जो मुड़ो हा श्रोतों घटना स्थल री जांच रे वास्ते किया सो फॉरेंसिक टीम पुजग छू रही हा और दसना चंदन की पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास चौधरी बद्दी में नौकरी करता था श्रोता हूँ 20 दिन पहले घर जो वापस आ तो दसुगढ़ की नौकरी छोड़ने तो बाद सो टैक्सी गड्डी लेकर के ऐसो चलाने भी योजना बनाऊ करता तो तिनी अपनी पत्नी भी बद्दी सेरी जो पत्नी थी सो भी बद्दी में रहते थे जबकि सेवे दोनों बेटे के ऐसो हरिपुर में अपनी दादी वाले रहते थे तड़ी पढ़ाई लिखाई करते थे पविजने तस्यो अंदर गिच करी सुने वास्ते जी बल्लू तिया कमरे में किया सो कुछ समय बाद कमरे में किया तिनी फंदा लाई ली उरा थोशो तो अब इती अंदर जो आऊँ समझे सकू करता है ऐसा खबर जो शो तो सो ये खबरें ही समझाऊ कर दे अब मेरे मानसिक तरीके हो गए कि मेरे दिमाग को हो गए कि कजो कि दोनों बेटे गए थे सो दादी वाले बंदे थी है घर से पति और पत्नी थी है ना जो ये दसो कर दिन तेरा मैं अब जो बस आऊँ मतलब दसो ही करता तू चीज़ा जो और ती है खबर भी सामने चले आया ता रिश्ता कोई भी है भाई साहब बैलेंस करना क्या सो दोनों साइड तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गंदा है नहीं तो आखिरकार फिर कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी गंदी इस प्रकार का माहौल बनी गंदा इस प्रकार इंसान अपना आपा खोई दिंदा है कि सो सोचता कि ठीक है यार अगर ही है तो फिर ऐसे सो रिलेशनशिप अगर 41 अभी एज में कोई व्यक्ति
प्रताड़ित बुझ करे अपने आप जो ख़त्म करूँ करदा हा, हरास बुझ करे अपने आप जो ख़त्म करूँ करदा हा, न जाने जो आऊँ सिस्टम समझ सकूँ करदा शतों सोए कि बी दिन पहले तिनी है कि आ सो अपने घर वापस चलिया, बद्दी बद्दी में तिनी है कि सो नौकरी छड़ी और गड्डी बनाने भी योजना के सो बनाऊ करदा थू कि गड्डी मुँह लैने टैक्सी मुँह चलाने हाँ इन बिटवीन अब सो कजो कि कभी लूणा होगे भी खाना पैंदा तो कभी शाही पनीर होगे भी खाना पैंदा हा, लेकिन खाने वाले तो खुआने वाले किन्ने आ इस पर बड़ा निर्भर करता। सो लूण बेके आ सो शाही पनीर का टेस्ट दे सकता, अगर खुआने वाली रह हथ अंदर सो जादू बोआ और खुआने वाली वह हथ अंदर सो आदर सत्कार सो प्यार भोआ शो तो न जाने कयो ये खबरें दसो कर दे कि तिनिया हरास बुझगो सो हरासमेंट तसी बुझगे। आई थिंक बल्लू बुना कजो कि कम कार ना बुना महीना डेढ़ महीना सो घर है बैखो बुना है ना, लेकिन 20 दिन पहले महीना भी नहीं आ बेचारा 20 दिन ही घर है बैखो और 20 दिन अंदर ऐसा हरास करी था कि तिनिया फंदा लेना किया आत्महत्या करना किया शतो सो बेहतर समझो। सो अक्सर बनते न कि एक महिला रे हथ के सो बड़ा कुछ बुंदा हा घर चलाना और घर बिगाड़ना, तो बड़ी सही गल बोल रही कसकी सियाणी कि एक महिला वे हथ मंच सो जादू बुना चिंता कि सो घर चलाए भी सका, बिगाड़ने तो बिगाड़ी सकती नहीं लेकिन चलाए भी सका है ना। परिस्थिति कैसी भी भून हक इन दे ग्रां रे ग्रां तो थोड़े करे और दूर रे कहानियाँ कि अक पति के सो अपनी पत्नी जो मारदा बहुत मारदा हा बहुत ज़्यादा मारदा, लेकिन सो फिर भी किया सो अपना कर्तव्य समझ करे कि सो तस्सोगे रेव कर दे आ करने सो भी बहुत कुछ कर सकते लेकिन शायद कुछ जिम्मेदारी सो समझ ही लेंदे आ, शायद तह अंदर इतनी सहनशीलता सहन शक्ति हा कि सो सब चीज़ा जो अंडरस्टैंड कर दे आ और तस्सोगे रेव कर दे आ। लेकिन ये बहुत गलत गल अक्सर के अशतों सुहाऊ कभी भी आक साइड तो बिल्कुल ही ना हेड़दा ना अपनी पर्सनल लाइफ में ना रेडियो मंच क्या साइड नहीं इड़ी पत्नी गलत थी कि 20 दिन अंदर ऐसा प्रताड़ित बुझगो पति कितनी फंदा ले लो और एक स्टोरी जो आऊँ दसू करदा तड़ी पति गलत आ, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में और धोनी जो बैलेंस करना क्या सो बहुत इंपॉर्टेंट है अशतों धोनी पक्ष जो धोनी पार्टी जो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, जिंदगी की सो आसान नहीं है लेकिन जिंदगी जो आसान बनाना चाहता हा शोतों और सो ताई बन दिया कि बैलेंस करी करी चलना था। फिलहाल शोतों आइया कार्यक्रम जो होगा बढ़ देन और धर्मा खेरी के चेहरी किया सो लाइन देन।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहे कार्यक्रम इस समय आज सचिन कपूर सोगी हूँ कर देने अपने अपने वेडियो सेट में तो श्रोतों सभी भी फरमाइश पूरी जरूर करो कर दें। लेकिन दसना चाहता है श्रोतों की पर्यटन नगरी एवं राजधानी कांगड़ा वे धर्मशाला वे प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट तरुण में किया। सो अज ते मतलब इस वीकेंड पर्यटक जो कि सो राती वास्ते की सो कैंपेनिंग करने वास्ते की श्रोतों सो ना कर रहा ये फैसला वन विभाग लियो है श्रोतों। और अज और दोते अक्टूबर यानी अज शनिवार और दोते रविवार जो कि सो त्रियुंड करथारना और लूंटा में रात्रि कैंपिंग वास्ते की सो रोक लगाने का निर्णय किया सो लियो है श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम जो हागो बढ़ते हैं और ये फैसला वन विभाग द्वारा लियो।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के श्रोताओं से बिल्कुल लाइव चल रही थी सभी वे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आप मौके फिर होने वाले वे आज जितने भी नवा श्रोता सूगे बने हैं बरहाल इंदे श्रोतागण सूगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन जी।
1: जनाब मैं ये होते बोल रहा था। हाँ टाइम तो थोड़ा रे है
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ जी तो कल माता जी हो रहे हैं ना आज बजर हो जाए फिर कनाल राणा दा।
0: अच्छा मिले
1: जाना काल का दे।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी आज हाँ जी आज ये सदी लंदे है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल और तैयारी तो आज तो बोलना चाहिए।
1: और हाँ जी हाँ जी और ठीक है ना सब कुंजे परिवार ठीक है खड़ा।
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। योल थो कड़ी थो बल्लू कर देना और कौन बल्लू दे।
1: मैं परशुराम बोला था जी।
0: अच्छा
1: सचिन जी फोन दी आवाज का वापस आई आंदी कुंजे परिवार से।
0: हाँ जी
1: आवाज का वापस आई आंदी
0: आवाज
1: वापस आ जांदी।
0: हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी डबल आ जांदी आवाज।
0: कुछ टेक्निकल चीज़ बुनी कुछ टेक्निकल इशू बुना है ना जी।
1: अच्छा ठीक है जी।

तो वो जहने तक तो है विनम्रता सोगी तसी वो सीखने की कोशिश ना कर ले, इच्छा जाहिर ना कर ले, तहने तगर किया सो तो है ज्ञान अर्जित ना कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त ना कर सकते हैं। शतों बल्द न कि विचार और व्यवहार मन रे सो द्वि फुल हिन जो इंदे व्यक्तित्व जो महकंदे हिन। जी बिल्कुल, तुंदे विचार कैसे हैं, तुंदा व्यवहार कैसा हा, बहुत इंपॉर्टेंट आ। तुंदे विचार के न सो बिल्कुल अच्छे बुने चिंदे हिन, छोटे तुंदे विचार एकदम फुल ही महकदे बुने चिंदे न, और तुंदा व्यवहार भी ऐसा बुने चिंदे कि जहने तो है वास्ते थो गुजरन ये जहने तो है कसी रे बिगान तत्यारे दिल किया सो तुसु एरे करे खुश पूछे गच्छा कि वाह यार मतलब ये आए तबे मजा ही ना है जाए गप्पा मारने रह जाए कत्ती भी चीज़ जरा किया सो मजा ही ना। तो अपने व्यवहार जो कुछ हो तो जिंदगी ना मोलने दोबारा, ये जिंदगी आके मौके मोलने और जिंदगी दोबारा ना मोलने शोतों, तो अपना व्यवहार भी हर किसी होगी जरूर वैसा रखा शोतों कि मन के सो त्यारा भी खुश बुझे अच्छा तुसु हेरे करे। प्रशंसा बिताई बुंदी इंसान रे जहना इंसान प्रशंसा लाइक बुंदा हा शोतों, है ना, तारीफ भी त्यारे बुंदे आ जो तारीफ लाइक कम किया सो करता हा शोतों। जीवन में सब थो बड़ी खुशी तस कम्मा जो करने में हा शोतों, जतियो लोग बलदे हिनकी तू सुथो ना भूणा हा, जाए लोग मून जाए अपने भून। हर कठिनाई में आक सबक के सो जरूर लुकुरा बुंदा छिपुरा बुंदा हा शोतों, बस हेरने भी नज़र के सो चाहते बुंदे आ। तो कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सो की सो हूँ गर्दन तो सब 91.2 MHz पर, और बस यही बोलना चाहूँगा शोतों की जीवन में किया सो सब थो बड़ी खुशी सब थो मोटी खुशी है कि तुंदा परिवार अगर तू सुसो गया और तुंदे परिवार में एकता, तुंदे परिवार में खुशहाली हा, तुंदा परिवार हंसदा खेलता हा। चलो माड़े मोटे लड़ाई झगड़े की सो वो चिकन दिन और लड़ाई झगड़े उतो बाद एनालाइज चीज़ा जो करना किया सो सब थो मोटी गल हा, लेकिन गलती करा इंदे डायरेक्टर संदीप परमार सर किया सो अक्सर बन दे गलती करा रोज करा रोजाना करा, गलती इंसान थो बंदे और इंसान गलती रा पुतला, रोज गलती करा, लेकिन यह गल्ला रा ध्यान रहे कि तह गलती थो किया सो कसी वा दिल ना दुखा और अक्की गलती किया सो बार बार रिपीट ना बुआ, कुछ कि हा गलती अगर बार बार रिपीट हो चुकर दे तो फिर गलती नहीं सो तुंदी मूर्खता फिर सो इन दी मूर्खता ना किया है, अक्की गलती की सो बार बार दोहराओ करते हैं। गलती करना चाहते आ इंसान गलती रहा पुतला और गलती करी करे इंसान की सो सीखता हा। और आज का एक कार्यक्रम आऊँ सीरियसली बल्लू कर दर्शोता हूँ कि आऊँ भी इस ही कार्यक्रम थो कि सो सीखता जो भी चीज़न जो भी गल जो भी एनालाइज आऊँ करता हा सो इसी कार्यक्रम थो करता हा शो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हा कि लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल आ बड़ी हसीन आ अगर तो है समझनता अगर तो है जीना चाहता और अगर बैलेंस करना चाहता, है ना, जिंदगी में बैलेंस करना बड़ी ज़रूरी है। चौर गल्ला अगर हल्के मन्नी ली ना तो दुई गल्ला के असो मोटे भी मनना चाहती हल्के री ताई कि असो खुशी बनते हल्का ही मनते गच्छा मोटे री, है ना, तो फिर हल्का कि सो फ्रस्ट्रेट बुझगंदा फ्रस्ट्रेशन में चली जाता चिड़चिड़ा बुझगंदा गुस्सैल बुझगंदा गुस्सेआला बुझगंदा। सो अगर चौर गल्ला मनी तो दोए मोटे जो भी मनना किया सो आवश्यक बुझगंदी हिन। बहरहाल ताऊँ सचिन कपूर हाल लेने तुसु सभी थो इजाजत गंदे गंदे तू सभी बोलना चाहता नवरात्रि बड़ी बड़ी शुभकामनाएं तुसु सभी जो नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, और अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पालकवा बनेगा राष्ट्रीय स्तर का SDRF ट्रेनिंग सेंटर, छोटे कारोबारियों को साल में एक बार ही भरना होगा GST रिटर्न। नगरोटा वगवा में लगेगा शहद प्रोसेसिंग प्लांट, हरोली में शुरू होगा उर्वरक बिक्री केंद्र। CBSE स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिलेंगे पसंद के स्टेशन, फैसला वापस। चाय से अस्पताल के बिल तक आर्थिक तरक्की नापने का पैमाना बनेगा UPI। इसी के साथ अब समाचार विस्तार से।

पालकवा एसडीआरएफ परिसर को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालकवा स्थित हिमाचल प्रदेश सेंटर ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की पहली वार्षिक मीट 2026 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने संबोधन में कही। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इसके परिसर के विकास और विस्तार के लिए हर संभव आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। इस परिसर को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एसडीआरएफ परिसर में इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना है। इसके साथ ही स्थानीय पंचायत के सहयोग से खेल मैदान विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। सिर्फ खुदरा ग्राहकों को सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों को साल में एक बार ही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। अभी वे साल में तीन बार रिटर्न दाखिल करते हैं और हर महीने जीएसटी का भुगतान करते हैं। नए नियम के लागू होने पर उन्हें साल में एक बार रिटर्न तो हर तीन माह पर जीएसटी भरना होगा, लेकिन ये सुविधा प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि इस प्रकार के दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। अगले साल अप्रैल से इस नियम को लागू किया जा सकता है। इसका फायदा 16 लाख से अधिक दुकानदारों को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक देश में 16 लाख से अधिक ऐसे दुकानदार हैं जो सिर्फ खुदरा ग्राहकों को सामान बेचते हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ अब अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। शिमला में हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में नगरोटा वगवा में शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने, मुख्य स्थानों पर नए पेट्रोल पंप खोलने और हरोली में नया खाद विक्री केंद्र शुरू करने जैसे कई फैसले लिए। उर्वरकों की बिक्री में को बढ़ावा देने तथा किसानों तक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई में बदले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति उनके पसंद के स्टेशनों पर नहीं होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर 5 अक्टूबर को जारी अधिसूचना वापिस ले ली गई है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित हों। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़क किनारे चाय समोसे के ठेले से लेकर बच्चों की स्कूल फीस और अस्पताल में भर्ती के बिल तक भारत में डिजिटल क्रांति का पर्याय बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब केवल भुगतान का जरिया नहीं रहेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज नापने का सबसे बड़ा आधिकारिक पैमाना बनने जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का दायरा और सटीकता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय की योजना है कि निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी विभागों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए यूपीआई के लेन देन डेटा और सरकारी वेतन रिकॉर्ड्स का उपयोग किया जाए। ये पूरी कवायद सरकार के नए सेवा उत्पादन सूचकांक के विस्तार का हिस्सा है। हिमाचल में 110 मार्गों पर ट्रेन के जरिए चेक और पार्सल की डिलीवरी शुरू की जाएगी। राज्य में डाक विभाग जल्द ही इस सुविधा का शुभारंभ करेगा। हालांकि मौजूदा समय में 36 मार्गों पर यह सेवा शुरू हो गई है जिसके सकारात्मक नतीजे मिले हैं। अब राज्य में 110 मार्गों पर इस सुविधा के शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि इस वर्ष 13 अगस्त को मंडी प्रधान डाकघर में रेहरधार सारखा डाकघर तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की ड्रोन से डिलीवरी कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया था। हिमाचल जैसे पर्वतीय प्रदेश में ये ऐतिहासिक पहल दुर्गम गांवों तक डाक व पार्सल पहुंचाने में लगने वाला समय घटाती है और सेवा को अधिक भरोसेमंद बनाती है। प्रदेश में अब इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी और दुर्गम गांवों तक डाक व पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी शुरू की गई है। बैंक विभाग के हिमाचल परिमंडल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
नए नियमों के तहत लेक्चरर के कुल 17,433 पद भरे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को नए नियमों के तहत पूरा किया जाएगा। सरकार ने नए नियमों के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग में लेक्चरर से संबंधित वर्ष 2010 के पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त करने का प्रावधान भी किया है। इससे संबंधित पदों की भर्ती और पदोन्नति अब अधिसूचित नए नियमों के अनुरूप संचालित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार लेक्चरर के पदों को ग्रुप वी गैर राजपत्रित श्रेणी में रखा गया है। हालांकि 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद इन पदों को ग्रुप वी राजपत्रित के रूप में माना जाएगा। इन पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स में लेवल केवल 12 निर्धारित किया गया है। नए नियमों भर्ती से लेकर सेवा शर्तों तक के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है ताकि विभाग में नियुक्तियों और पदोन्नतियों की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

शोतम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

0: Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: अब सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ। कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

मैं सचिन कपूर हूं और कार्यक्रम में गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूं। ये सिलसिला ये गीतों का पिटारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

गीतों की माला यूं ही पिरोते रहिए, गीतों की माला यूं ही संजोते रहिए। हम आपके साथ हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में, और धर्मशाला से बिल्कुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, और कार्यक्रम में गीतों का आनंद यूं ही लेते रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने।

अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है. नमस्ते, नमस्कार. मेरा नाम सचिन कपूर है और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को मैं होस्ट करूंगा. मैं आपके साथ रहूंगा श्रोताओं और कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन गीत जो है वो आपको सुना सकूं और कुछ धर्मशाला से जुड़ी, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारियां जो हैं वो आप तक मैं साझा कर सकूं. श्रोताओं, इस बात की कोशिश जो है वो लगातार 8 बजे तक जारी रहेगी. श्रोताओं, तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में. तो सबसे पहले श्रोताओं, धर्मशाला का मौसम जानने के लिए जो मन में एक जिज्ञासा सी रहती है ना, जो घर से बाहर हमारे श्रोता रहते हैं, यानी कि धर्मशाला से बाहर जो हमारे श्रोता रहते हैं अपने, क्योंकि धर्मशाला हमारा घर ही है सबका, है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है कि आज मौसम किस तरह का है. तो बताना चाहते हैं, इस समय श्रोताओं लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है. नमी की बात की जाए श्रोताओं, तो 70% के आसपास जो है वो नमी बनी हुई है श्रोताओं. और बहुत सी और जानकारियां हैं जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारी जानकारियां जो है वो हमारे हम तक जो पहुंचती है वो हमारे श्रोताओं तक भी जो है वो ज़रूर पहुंचे. और साथ ही साथ श्रोताओं, आइए, तो क्योंकि कहते हैं ना कि आगाज़ जो है वो ज़रूर होता है और ज़रूर होना चाहिए एक प्यारे से गीत के साथ, तो आगाज़ बहुत मायने रखता है श्रोताओं. तो आप सभी भी बाखूबी इसी बात को सोच रहे हैं कि आगाज़ जो है वो हो जाना चाहिए. ज़रूर होगा श्रोताओं. और साथ ही साथ आगाज़ के साथ श्रोताओं, चलिए पहले आगाज़ कर लेते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ और उसके बाद अन्य जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे. बने रहेगा, जुड़े रहेगा 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ. गूंज अपने मन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की.

वाकई में नशतों की खूबसूरत चीज़ों को जो है वो अक्सर फुर्सत से बनाया जाता है। आप सभी भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, आप सभी भी अपने कामों को लेकर जो है वो बहुत खूबसूरत है। शोतों काम अक्सर खूबसूरत होते नहीं हैं, लेकिन लेकिन शोतों अपने कामों को जो है वो बेहतरीन तरीके से करना, रोज़ाना सही तरीके से करना जो है वो काम की एक खूबसूरती होती है। तो उस खूबसूरती को जो है वो ज़रूर बना कर रखिए। शतों आइए लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। कहते हैं अहंकार देखकर जो है ना शतों वो किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि आप अपनी गलती मानकर उस रिश्ते को और मजबूत बना ले। अक्सर शोतों एटीट्यूड की वजह से अहंकारी होने की वजह से अहंकार आ जाने में बहुत से रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। जब इंसान के अंदर वो अहंकार आ जाता है तो बहुत से रिश्ते आज की डेट में जो है वो हमने टूटे देखे हैं शोतों, और आप सभी ने भी बाखूबी देखे होंगे। लेकिन देखिए अहंकार से कुछ नहीं होता, रावण को भी बहुत अहंकार था शोतों। कहते हैं ना कि अहंकार से कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर आप झुक कर हर एक रिश्ता जो है वो बचा सकते हैं तो वो बिल्कुल बचा सकते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ सचिन कपूर आपके साथ, आपका अपना आरजे। चलिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस गीत के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और जानकारियों का पिटारा जो है वो भी बिल्कुल अब हाँ बिल्कुल खोलने की स्थिति में जो है वो जानकारियों का पिटारा हो चुका है, और धीरे धीरे जानकारियों का पिटारा जो है अब वो खोलते चलते हैं श्रोतों। कल से हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे हैं श्रोतों, तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो घर में हमारी माँ है, बूढ़ी माँ है, उसका दिल जो है वो नहीं दुखना चाहिए, वो माँ भी जो है वो खुश रहनी चाहिए श्रोतों, है ना। तभी हमारी माँ जो है वो खुश रह सकती है। तो घर में माँ है उसका दिल जो है वो ना दुखाएं। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रा कल से जो है वो शुरू है श्रोतों, सभी शक्तिपीठों में तैयारियां जो है वो तेज है। तो श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 11 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्रों की तैयारियां हो चुकी हैं श्रोताओं। और मंदिर अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि नवरात्रे के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है श्रोताओं। पूरी तैयारियाँ लगभग हो चुकी हैं। नवरात्रे के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है वो 60 पंडितों तथा सांस्कृतिक महाविद्यालयों के 20 छात्रों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 45 पुलिस जवान और 30 होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे, जबकि 12 होमगार्ड के जवान पहले से ही मंदिर परिसर में तैनात हैं श्रोतों। नवरात्रा के दौरान नरेश आचार्य मुख्य यजमान के रूप में जो है वो पूजा अर्चना करेंगे, जबकि सुभाष चंद और मदन दीक्षित सहायक यजमान की भूमिका जो है श्रोताओं वो निभाएंगे। वहीं हिमानी चामुंडा में मनोज कुमार और पवन गोस्वामी यजमान के रूप में जो है वो पूजा अर्चना करेंगे श्रोताओं। उधर कांगड़ा में नगरकोट माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 11 से 20 अक्टूबर तक शारदा कालीन नवरात्र को लेकर जो है वो मंदिर प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है श्रोताओं। मंदिर को रंग बिरंग फूलों व लाइटों से सजाने का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है श्रोताओं। प्रशासन और मंदिर व्यवस्था को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है श्रोताओं। वहीं पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्था की जांच की अभी जो है वो जांच की जा रही है श्रोताओं, ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो श्रोताओं। नवरात्रों के दौरान जो है वो पुलिस जवानों के साथ 25 होमगार्ड भी तैनात रहेंगे श्रोताओं। यही कांगड़ा के साथ लगती वाणगंगा घाट पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही जा रही है श्रोताओं। SDM अंजलि गर्ग ने बताया कि नवरात्रे के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं श्रोताओं। इसी तरह बाकी शक्तिपीठों में जो है श्रोताओं वो भी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, और आप सभी को रेडियो गुंजन की ओर से और इस नाची सचिन कपूर की ओर से नवरात्रों की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जो बात मैंने शुरू में कही है उस बात का ख्याल ज़रूर रखें श्रोताओं कि जो घर में माँ है उस माँ का ख्याल भी खास ज़रूर रखें।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी श्रोतों का, सभी सुनने वालों का। तो चलिए श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ अपने सभी श्रोतों को रूबरू करवाते हैं। पर्यटन नगरी एवं राजधानी कांगड़ा के धर्मशाला के प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट त्रिवेणी में श्रोतों इस वीकेंड पर्यटक रात को, यानी कि अब रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, है ना, तो अभी आप कैंपिंग नहीं कर सकेंगे। ये फैसला वन विभाग ने ले लिया है श्रोतों, और वन विभाग ने 10 यानी कि आज की रात और 11 अक्टूबर यानी कल की रात रविवार को भी और आज की रात शनिवार को भी जो है वो आप त्रिवेणी करथारना और लूंटा में रात्रि कैंपिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है श्रोतों। हालांकि पर्यटन दिन के समय जो है वो ट्रैकिंग कर सकेंगे। दोनों दिन वन विभाग की जो है वो टीमें क्षेत्र में निगरानी रखेंगी श्रोतों। वन विभाग की ओर से ज़रूरत स्वच्छता अभियान एवं ट्रैकिंग साइट के वास्तु की जो है वो मरम्मत कार्य सहित अन्य ज़रूरी कार्य को किए जाना प्रस्तावित किया गया है श्रोतों, जिसके चलते ही इस वीकेंड में पर्यटकों को त्रिवेणी जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। वीकेंड पर घूमने का कार्यक्रम बना रहे पर्यटकों को इस फैसले से मायूसी जो है वो ज़रूर हो चुकी होगी इस समय श्रोतों, क्योंकि हाल ही में त्रिवेणी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी थी श्रोतों। इस महीने के पहले सप्ताह में ही 2 अक्टूबर को त्रिवेणी में रिकॉर्ड करीब 1700 ट्रैकर एक ही दिन में जो है वो पहुँच गए थे श्रोतों। गांधी जयंती और वीकेंड के चलते यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग के लिए जो है श्रोतों वो पहुँचे थे। वीडियो भी सोशल मीडिया में आपने देखी, खूब वायरल हुई थी श्रोतों, है ना। ऐसे में दूसरे ही वीकेंड पर रात्रि कैंपिंग पर रोक लगाने से उन पर्यटकों की योजना प्रभावित हो सकती है जो त्रिवेणी में रात बिताकर पहाड़ों के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए जो है वो दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं। खनियारा खड़ौता क्षेत्र के प्रसिद्ध ठटारना ट्रैक थात्री, ज्वाला, होड़ी, धार, राइजिंग स्टार हिल्स और करेरी झील पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता के बीच घूमने का अवसर दे सकते हैं श्रोतों। इन स्थलों पर पहाड़ भी हैं, हरियाली भी है और प्राकृतिक दृश्य का आनंद आप ले सकते हैं श्रोतों, जा सकते हैं। ऐसे में त्रिवेणी में रात्रि कैंपिंग पर रोक के बावजूद पर्यटक अपने वीकेंड को यादगार बनाने के लिए दूसरे ट्रैकिंग स्थलों का रुख कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अहम है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे श्रोतों और लेके चलेंगे आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। होप्सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, जो रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अगली जानकारियों के साथ अपने श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। अश्वतों देखिए, इंसान जो है ना वो न जाने क्या क्या सोचता रहता है अपने जहन में जब वो अकेला होता है। एज आई थिंक इस खबर के बाद मुझे लग रहा है कि एज मैटर नहीं करती, परिस्थितियाँ कैसी हैं वो मैटर करती हैं, सिचुएशन कैसी है वो मैटर करती है। क्योंकि अगर 41 साल का आदमी, 41 वर्ष कोई व्यक्ति अगर श्रोताओं आत्महत्या कर रहा है तो फिर न जाने सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, उसके परिवार का एनवायरनमेंट, उसकी खुद की सिचुएशंस, उसकी खुद की परिस्थितियाँ कैसी हैं ये वो भी नहीं जान पाएगा बेहतरीन तरीके से। अंतिम रास्ता चुना मौत को गले लगाने का, श्रोताओं विकल्प सिर्फ ये बचा था कि मौत को गले लगाया जाए। ये मुश्किल बहुत है क्योंकि खुद को ख़त्म करना वाकई में ही मुश्किल बहुत है श्रोताओं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ ना कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो जाती हैं, इंसान सोचता है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ। पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत हरिपुर में श्रोताओं रात को 41 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विकास चौधरी पुत्र सतीश चौधरी निवासी हरिपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जो है श्रोताओं जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सूचित किया गया है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास चौधरी बद्दी में नौकरी करता था, 20 दिन पहले गाँव लौटा था। बताया जा रहा है श्रोताओं की नौकरी छोड़ने के बाद वह गाड़ी लेकर चलाने की योजना बना रहा था। उसकी पत्नी भी बद्दी में रहती है जबकि उसके दोनों बेटे हरिपुर में अपनी दादी के पास जो है वो रहकर पढ़ाई करते थे, श्रोतों पढ़ाई करते हैं अभी भी। परिजनों ने उसे अंदर जाकर सोने के लिए कहा श्रोतों, जिसके बाद वह कमरे में चला गया। कुछ समय बाद कमरे में उसने लकड़ी की कड़ी से चुन्नी का फंदा जो है वो लगा लिया श्रोताओं और खुद को समाप्त कर दिया, अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी श्रोताओं। पुलिस अधीक्षक देहरा संदीप धवल ने बताया है कि हरिपुर में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो होती रहेगी श्रोताओं, लेकिन ये वाकई में ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना, खुद को ख़त्म करना, तो आप सोचिए हमें हल्का सा कट लग जाए तो भी हमें कितना दर्द जो है वो महसूस होता है। तो सोचिए जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में, जो व्यक्ति खुद को ख़त्म कर रहा है, खुद की जान जो है वो दे रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा, वो आदमी कितना जो है वो टूट चुका होगा श्रोताओं। और आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए जनाब, पुरुषों की जो मौतें हैं वो अक्सर आत्महत्या के कारण हो रही हैं। बहुत से सवाल हैं जहन में, शायद इसी खबर से मेरे जहन में जो है वो बहुत से सवाल बने हैं कि क्या ऐसे कारण बन गए, कि क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई। परिवार की सामने दिखती बात है श्रोताओं, क्योंकि दो बेटे थे, खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। न जाने कौन सी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन उसके जहन में आई और उसने ये काम कर लिया श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं, आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

आपको सुनाएंगे श्रोताओं, और कुछ एक जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। खास जानकारियों का सिलसिला ज़रूर चलेगा आप सभी के रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। सुनाते हैं आप सभी श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत।

बिल्कुल श्रोतो, आई एम इन लव। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये गीत है श्रोतो, नाना करते प्यार में तुम ही से कर गई। देखिए, प्यार तो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है श्रोतो, है ना जी। धड़कन मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतो, और उदित नारायण और अलका याग्निक की बेहद खूबसूरत आवाज़ में हमने सुना। बहुत ही रोमांटिक सा ये गीत था श्रोतो। तो श्रोतो कहते हैं ना कि देखो, जब तक विनम्रता और सीखने की इच्छा ना होना, तब तक कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। विचार और व्यवहार मन के वो फूल हैं जो हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। आपका विचार और आपका व्यवहार, ये वाक्य में ही आप अपने विचारों से जाने जाते हैं श्रोतों, और अपने व्यवहार से जो है वो जाने जाते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस व्यक्तित्व के आप व्यक्ति हैं, कौन सी खुशबू जो है वो आपके व्यक्तित्व में छलकती है, महकती है। तो अपना विचार और अपना व्यवहार जो है श्रोतों, वो ज़रूर ऐसा रखिए कि जैसे आपका व्यवहार है। जब भी आप कहीं से गुजरे तो ज़रूर व्यक्ति ये ज़रूर बोले कि यार, इस व्यक्ति के पास जो है वो जाकर दो मिनट बैठ लेते हैं, या इससे जो है वो बातचीत कर लेते हैं, इससे वार्तालाप कर लेते हैं। ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो है वो आपका ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ, और अब से कुछ ही देर में श्रोतो आप सुनेंगे पूरे 7 बजे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन में समाचार, आपके अपने रेडियो गुंजन में। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

0: परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। ये हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 34वीं समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि PM राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट में। श्रोता कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। उसी काम को करने में सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज़्यादा उत्साह जो है वो बढ़ता है इंसान का। श्रोताओं, और हर कठिनाई में एक सबक जो है वो ज़रूर छिपा होता है। श्रोताओं, बस देखने की जो है वो नज़र चाहिए, है ना। हम कहते हैं ना कि अक्सर लाइफ में जो है वो बहुत सी कठिनाइयाँ जो है वो आ जाती है। श्रोताओं, उन कठिनाइयों से जूझते जूझते हम कब कहाँ पहुँच जाते हैं शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन लेकिन श्रोताओं यहाँ पर ज़रूर सोचिए कि कठिनाइयों से जूझते जूझते कुछ ना कुछ जो है वो हम ज़रूर सीखते हैं। तो बहरहाल इस इन खबरों के बाद जो है वो आपको लेके चलेंगे एक प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद फिर आप सभी श्रोताओं को कुछ एक खास जानकारियों के साथ रूबरू।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोतम, 24 घंटे में तुम दूसरे को देखने में या दूसरे के बारे में सोचने में कितना आप 24 घंटों में कितना सोचते हैं या कितना आप दूसरों के बारे में बोलते हैं या बुराइयां करते हैं, कितना कितनी प्रकार की होती हैं? आई थिंक ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हर कोई कर ही लेता है, है ना। तो श्रोतों, इस बात का भी खास ख्याल ज़रूर रखें कि दूसरों की बुराइयां जो हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दूसरों की बुराइयां श्रोतों नहीं करनी चाहिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, शिमला जिला के रोड़ू स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रोतों, योजना विभाग ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को धनराशि दे दी है। श्रोतों, और धनराशि देने के बाद पत्र भी भेज दिया है। श्रोतों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रोड़ू सीबीएसई स्कूल में जो है वो विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान एक छात्रा की रिक्वेस्ट पर आग्रह पर जो है ये राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब धनराशि जारी कर दी गई है। श्रोतों, संवाद के दौरान छात्रा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि क्या वह उनके स्कूल के लिए नए भवन बनवा सकते हैं। अपनी समस्या बताते हुए छात्रा ने कहा कि स्कूल के सीबीएसई से संबद्ध होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों को 2 शिफ्टों में जो है वो संचालित करने की योजना है। छात्रा ने बताया कि बसों की उपलब्धता से जुड़ी समस्या के कारण लगभग 50% विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने के साथ साथ कुछ विद्यार्थियों को स्कूल बदलने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। श्रोतों, छात्रा की समस्या को गंभीरता से सुनने के बाद रोड़ू में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी गांव से जुड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए से पूरे भवन का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ये राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नए भवन के निर्माण के लिए भविष्य में भी अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त और उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि रोड़ू में विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर कैंपस तैयार किया जाएगा। रोड़ू के विधायक मोहन लाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र के विकास कार्य और घोषणाओं के लिए धनराशि जारी करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धनराशि जारी होने से रोड़ू विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने रोड़ू के विकास में कोई कमी नहीं रखी हुई है, कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और यही उनकी कार्यशैली की विशेषता है। चलिए श्रोतों, कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, खबरों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, आप सभी श्रोताओं को लेके चलते हैं इस

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और कार्यक्रम को बिल्कुल हम आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला जो है वो बाखूबी आपके साथ चल रहा है श्रोतों, और साथ ही साथ गीत संगीत का सिलसिला भी चल रहा है श्रोतों। आइए अगली जानकारी आप तक साझा करते हैं। ज़िला कांगड़ा के पपरोला के पास 1.792 ग्राम किलोग्राम जो है वो चर्स बरामद की गई है श्रोतों। और मामले में विशेष न्यायाधीश एक कांगड़ा स्थित धर्मशाला की अदालत ने 22 वर्षीय विशी गोस्वामी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि बरामद चर्स व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में जो है वो आती है और ऐसे मामले में जमानत के लिए जो है वो बिल्कुल मनाही है। साफ सटीक शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल मना है श्रोतों। पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित कड़ी शर्तों को पूरा करने की ज़रूरी है श्रोतों। मामले में आदेश शनिवार को विशेष न्यायाधीश अमन सूद ने सुनाया। अभियोजना के अनुसार 2 मई 2026 को पुलिस पपरोला के पास जो है वो अपने राउंड पर थी श्रोतों। अदालत ने स्पष्ट की कि आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत याचिका के निपटारे तक सीमित रहेगी और मुकदमे की अंतिम निर्णय को जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। तो श्रोतों कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव। और श्रोतो कार्यक्रम लाइव तो यूं ही चलता रहेगा। आइए अब आपको लेके चलेंगे श्रोतो बिल्कुल अब आपको लेके चलेंगे श्रोतो इस छोटे से अंतराल की ओर। बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है।
6: ऐसे यार, इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो चुका है श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 14,000 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई बैठक में ये स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ये सभी स्वीकृत पद अगले वर्ष मार्च तक भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में आज रिकॉर्ड करीब 200 एजेंडों पर चर्चा की गई।
2: मीटिंग बहुत लंबी चली है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार है कि इस कैबिनेट मीटिंग में लगभग 200 के करीब एजेंडा जो है वो डिस्कस किए गए हैं और उनके स्वीकृति जो है प्रदान की गई। जैसा हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे, उस ओर एक आज कैबिनेट में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज की लगभग कोई 14,000 से 15,000 पोस्टें आज कैबिनेट में संख्या की गई है।
1: हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार अब तक 32,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है और 18,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की पहली पोषण नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति को विधानसभा में लाकर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने खेल नीति में बदलाव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रत्येक महिला खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और समाज की आवश्यकताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य साकार करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ अभियान के 6th संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक के उपभोक्ता बनने की बजाय नई तकनीकों के सृजक और नवाचारकर्ता बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है वो उनकी दूरगामी सोच और देशवासियों के प्रति भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपरा में शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति व राष्ट्र निर्माण का साधन है। सांसद राजीव भारद्वाज और NIT हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर HM सूर्यवंशी समेत अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला में भटियात विधानसभा क्षेत्र की जरई पंचायत में 2 संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही भटियात क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। पठानिया ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुरूप सभी संपर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल सेक्शन पर अब 11 अक्टूबर से 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन दोबारा बहाल करने का निर्णय लिया है। ये फैसला नैरोगेज ट्रैक को सभी सुरक्षा मानकों पर सुरक्षित और ट्रेन संचालन के लिए अनुकूल पाए जाने के बाद दिया गया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से पठानकोट, कांगड़ा, बैजनाथ, ज्वालामुखी रोड और जोगेंद्रनगर क्षेत्र के हजारों यात्रियों सहित पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों व समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ऊर्जा, समर्पण और सक्रियता के साथ जनता के बीच कार्य करने को कहा है। कुल्लू में आज संगठनात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव, पंचायत, मंडल और बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा। राजीव बिंदल ने प्रत्येक मंडल में हर महीने में कम से कम एक प्रभावी जन प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
3: दीदी, आजकल FPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया,
3: ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
4: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अब बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANN या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार

0: करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य देश की विविधता को संजोते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के अनुसार जब देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे राज्य की संस्कृति और विचारों का सम्मान करेगा तभी वास्तविक रूप से एक सशक्त समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा।
2: आपके पास अगले 25 वर्ष का वो समय है जिसे नए भारत के निर्माण के समय के रूप में याद किया जाएगा। हमारी कितनी पीढ़ियां देश के लिए असीम बलिदान दिए, देश के लिए असंख्य सपने देखे। हमें देश की विरासत के वैभव के लिए काम करना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए काम करना है। हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना है। हमें अपनी परंपराओं को समृद्ध करने के लिए काम करना है।
1: शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। अन्य जिलों में भी नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति जिला में 2 दिवसीय ग्रे घोस्ट MTB चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का 4th संस्करण शुरू हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने आज इस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: लाहौल स्पीति में बरबो कारण और लक्षण गांव के आसपास स्थित जलबूरी ट्रैक पर आयोजित इस प्रतियोगिता में इस भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अध्यक्ष सुशील कुमार के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में शुरू हुई ये प्रतियोगिता अब 4th संस्करण में पहुंच गई है। उपायुक्त ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने और लाहौल स्पीति में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान प्रगति नगर में आज युवा संसद व नशा मुक्त युवा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा युवा भारत शिमला और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवा सशक्तिकरण व नशा मुक्त भारत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 14,000 से अधिक पद भरने को दी मंजूरी। मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। राज्यपाल कपिंद्र गुप्ता ने विज्ञान नवाचार और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने पर दिया बल। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों के लिए सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा। शारदीय नवरात्र कल से होंगे शुरू। धार्मिक स्थलों पर प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध और लाहौल स्पीति जिला में MTB चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का 4th संस्करण शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
4: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर, यह है आप सभी का अपना वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपका अपना RJ सचिन कपूर। तो श्रोताओं, अब मुझे यानी कि RJ सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रे शुरू हैं तो माँ का ध्यान, जो घर में बैठी माँ है श्रोताओं, उसका ध्यान ज़रूर रखें और माता रानी का गुणगान, माता रानी का नाम जो है वह ज़रूर ले श्रोताओं। अच्छे काम ज़रूर करें, अच्छे कर्म ज़रूर करें, क्योंकि अंत में कर्म ही काम आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई
6: है। इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

नमस्कार 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पालकवा बनेगा राष्ट्रीय स्तर का एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर। छोटे कारोबारियों को साल में एक बार ही भरना होगा जीएसटी रिटर्न। नगरोटा वगवा में लगेगा शहद प्रोसेसिंग प्लांट। हरोली में शुरू होगा उर्वरक बिक्री केंद्र। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिलेंगे पसंद के स्टेशन, फैसला वापस। चाय से अस्पताल के बिल तक आर्थिक तरक्की नापने का पैमाना बनेगा यूपीआई। इसी के साथ अब समाचार विस्तार से।

पालकवा एसडीआरएफ परिसर को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालकवा स्थित हिमाचल प्रदेश सेंटर ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की पहली वार्षिक मीट 2026 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने संबोधन में कही। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इसके परिसर के विकास और विस्तार के लिए हर संभव आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। इस परिसर को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एसडीआरएफ परिसर में इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना है। इसके साथ ही स्थानीय पंचायत के सहयोग से खेल मैदान विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। सिर्फ खुदरा ग्राहकों को सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों को साल में एक बार ही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। अभी वे साल में 3 बार रिटर्न दाखिल करते हैं और हर महीने जीएसटी का भुगतान करते हैं। नए नियम के लागू होने पर उन्हें साल में एक बार रिटर्न तो हर 3 माह पर जीएसटी भरना होगा, लेकिन ये सुविधा प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि इस प्रकार के दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। अगले साल अप्रैल से इस नियम को लागू किया जा सकता है। इसका फायदा 16 लाख से अधिक दुकानदारों को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक देश में 16 लाख से अधिक ऐसे दुकानदार हैं जो सिर्फ खुदरा ग्राहकों को सामान बेचते हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ अब अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। शिमला में हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में नगरोटा वगवा में शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने, मुख्य स्थानों पर नए पेट्रोल पंप खोलने और हरोली में नया खाद विक्री केंद्र शुरू करने जैसे कई फैसले लिए। उर्वरकों की बिक्री में को बढ़ावा देने तथा किसानों तक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई में बदले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति उनके पसंद के स्टेशनों पर नहीं होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इससे लेकर 5 अक्टूबर को जारी अधिसूचना वापिस ले ली गई है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित हों। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़क किनारे चाय समोसे के ठेले से लेकर बच्चों की स्कूल फीस और अस्पताल में भर्ती के बिल तक भारत में डिजिटल क्रांति का पर्याय बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब केवल भुगतान का जरिया नहीं रहेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज नापने का सबसे बड़ा आधिकारिक पैमाना बनने जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का दायरा और सटीकता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय की योजना है कि निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी विभागों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए यूपीआई के लेन देन डेटा और सरकारी वेतन रिकॉर्ड्स का उपयोग किया जाए। ये पूरी कवायद सरकार के नए सेवा उत्पादन सूचकांक के विस्तार का हिस्सा है। हिमाचल में 110 मार्गों पर ट्रेन के जरिए चेक और पार्सल की डिलीवरी शुरू की जाएगी। राज्य में डाक विभाग जल्द ही इस सुविधा का शुभारंभ करेगा। हालांकि मौजूदा समय में 36 मार्गों पर यह सेवा शुरू हो गई है जिसके सकारात्मक नतीजे मिले हैं। अब राज्य में 110 मार्गों पर इस सुविधा के शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि इस वर्ष 13 अगस्त को मंडी प्रधान डाकघर में रेलधार सारखा डाकघर तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की ड्रोन से डिलीवरी कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया था। हिमाचल जैसे पर्वतीय प्रदेश में ये ऐतिहासिक पहल दुर्गम गांवों तक डाक व पार्सल पहुंचाने में लगने वाला समय घटाती है और सेवा को अधिक भरोसेमंद बनाती है। प्रदेश में अब इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी और दुर्गम गांवों तक डाक व पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी शुरू की गई है। बैंक विभाग के हिमाचल परिमंडल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
नए नियमों के तहत लेक्चरर के कुल 17,433 पद भरे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को नए नियमों के तहत पूरा किया जाएगा। सरकार ने नए नियमों के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग में लेक्चरर से संबंधित वर्ष 2010 के पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त करने का प्रावधान भी किया है। इससे संबंधित पदों की भर्ती और पदोन्नति अब अधिसूचित नए नियमों के अनुरूप संचालित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार लेक्चरर के पदों को ग्रुप वी गैर राजपत्रित श्रेणी में रखा गया है। हालांकि 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद इन पदों को ग्रुप वी राजपत्रित के रूप में माना जाएगा। इन पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स में लेवल केवल 12 निर्धारित किया गया है। नए नियमों भर्ती से लेकर सेवा शर्तों तक के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है ताकि विभाग में नियुक्तियों और पदोन्नतियों की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी।
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका है, लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3, 2, 1 करूंगा। हाँ। तू मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई ऐसे।
6: Oh, no. इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
7: रेडी?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: हम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कर तुम हम तुम लता हाथ की पाता लता हाथ पता पाता मेरा कस करामत
1: ताते चेता
2: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
5: 3-2-1 करूंगा। हाँ। तुम्हें ना गंदी से ऐसे करके शक्ल बनानी है।
6: ऐसे इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
5: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?

0: बढ़े।
1: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
0: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
2: ऐसा क्या?
0: हाँ।